बाल भय भूरे गर्व भय चूरे अब का करे लाल। बाल भय भूरे गर्व भौ चूरे अब का करे लाल। खाल सुकड़ गई हड्डी।

हमन से भजलो रे हरी, तन से भजलो रे हरी, राम नाम है जग में।

उठा साटका नारद देखे करम की रेखा सात मन से भज लो रे हरी तन से भज लो रे हरी।

अमरनाथ की अमर कहानी सब जग में हो गई हो सीता। ए मन से भज लो रे हरी, तन से भज लो रे हरी।

राजन करे तेज विसर्जन लंका राज दिलाए। भजन करे तेज

करो हरी जगत जगतारे भजन करो हरी जगत जगतारे भजन करो हरी जगत।

किसान भाई भी सुनते हैं और किसान भाई भी सुनते हैं और किसान भाई भी सुनते हैं। फेमनो बे दशमलव चार।

0: शुभ कर्म। बदलती जलवायु के लिए तैयार हूं।
1: राम राम मनीष भज्जा, कितने चले जा रहे?
2: हम कितो नहीं जा रहा, बस इतने ही थे और हम सोच रहे थे कि हम अपने साथियों से एक मुलाकात कर ले में।
1: हाँ।
2: तो हम अपने साथियों से सबसे पहले राम राम करण चाहतेंगे और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे कार्यक्रम को सुनत
1: हेंगे।
2: हाँ,
1: अच्छा अच्छा,
2: कैसे जो देख रहा है कि कार्यक्रम तो सुनत हेंगे हमारे साथी, लेकिन हमें एक शिकायत है कि साथियों से।
1: अरे तुम्हें साथियों से शिकायत है?
2: हाँ, फोन नहीं करत हेंगे।
1: अरे तो घबरावी वाली बात नहीं है मनीष भैया, देखो तुम का है कि जल्दी भावुक हो जाओ ते, और तुम्हें जा लगत के वो एक कहावत है ना, तुरंत दान महाकल्याण। सो तुम सोचत के अब हाल हमने प्रोग्राम चला हुए को और अब हाल अपने श्रोता साथियों के फोन आ जावे।
2: हाँ।
1: तो ऐसो नहीं होते। देखो तुम्हें अगर हम ये बात की खुशी एक बता देवे कि अपनो जो प्रोग्राम पहले का हो तो किसे रेडियो पे आद तो है, सो रेडियो पे ट्यून करते आदमी को कितनी परेशानी होती, लोग बाग सुना थे लेकिन फिर भी मेहनत करके पहाड़ियन पे चढ़ के पेड़न पे लगा के एंटीना, लेकिन अब का है ऐप से भी सुनते ही। और सबसे अच्छी बात जो हम बता देवे कि पहले अपन और इनकी जो पोस्टें जाऊती हती प्रोग्राम की जानकारी जब देते।
2: हाँ।
1: सो उमें कमाई लाइक आते, जो लाइक करे ना पसंद करते जो को, सो उनकी संख्या जो हती कम हती, लेकिन अब अपन देखो तो उनकी संख्या बिलात बढ़ गई।
2: तो तुम्हारा कहवे को जो मतलब के आदमी अब हमारे श्रोता साथी सोशल मीडिया पे ज्यादा अपडेट रन लगे हेंगे। कैसे सोशल मीडिया को अभी जमानो है गो और उनके पास एंड्रॉइड फोन रहेंगे और जैसे ही पोस्ट देखी और ऐप भी हमारे बहुत सारे साथियों ने डाउनलोड कर ले हैं, तो हम उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे। कैसे हम हमारे साथ जो स्नेह आपको बनो है वो, और आप जो आपकी स्नेह से हम जो कार्यक्रम तैयार करा थेंगे, आपके समय को देखा दबाए, आपके जलवायु परिवर्तन को देखा दबाए, सारे चीजन को देखा दबाए, हम अपने श्रोता साथियों को कार्यक्रम जो बना थेंगे उनको भी बड़े अच्छी तरीके से सुना थे और हमें फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से भी बताते भी हैंगे।
1: बिल्कुल, अब देखो आपने व्हाट्सएप की कही हैगी तो हम व्हाट्सएप पे भी बता देवे कि रात के ना वे दिन रात देख रहा है कि क्या बज रहा है, फोन लगा दो अपने साथी पे। तो
2: अच्छा,
1: काहे के दिन के काहे नेटवर्क तो बिजी जाऊ दे, और अपन औरन को जो रेडियो बुंदेलखंड जेते बनो है गो, सुबह तक ऐसा स्थान है गो के उते टावर ने कम आउते ही है, सो ई वजह से भी अपने साथी फोन तो लगा उठेंगे लेकिन वो अपन तक नहीं पहुंच पाते। तो ऐसे में आपको शिकायत करने की जरूरत नहीं है।
2: ठीक है भैया, तो सबसे पहले साथियों को बता दे वो चाहते हैं कि आज के जो कार्यक्रम शुभ कल में हम बहुत बहुत स्वागत कराते हैं आपके रेडियो साथी मनीष।
1: और भैया हमें तो आप चिंता ही हुजो, हमारा नाम है वर्षा।
2: और साथियों आप सुन रहे कार्यक्रम शुभ कल को।
1: श्रोताओं यह कार्यक्रम लोरियल फाउंडेशन के सहयोग से रेडियो बुंदेलखंड पर प्रसारित किया जा रहा है और यह कार्यक्रम की 13वीं श्रृंखला है।
2: वर्षा, आज के हमारे जो कार्यक्रम शुभ कल में आज अपन बैरू भौजी को भी सुनवा है साथियों को।
1: अरे बिल्कुल, ये नहीं सुनवाना है बैरू भौजी को, तो जमानो ही है वो, काहे के अपनी बैरू भौजी जो बातचीत करती है वह 101% सत्य हो जाते हैगी और हम तो लोग उन्हीं की बात मान लेते हैंगे। सो बैरू भौजी को अपन सुनेंगे और अपनो पर्यावरण को देखत भाई अपन यही पे बातचीत अपन हो कर वो जरूरी है गो। तो देखो हम तो जा कहेंगे कि पर्यावरण को बचावे के लाने छोटे से छोटो अगर उपाय भी आप कर रहे होगे तो समझ लो कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आप जो ना सोचो कि आपने अरे छोटो ही सो काम करो हम काई को बतावे, आपको बताने है गो कि पर्यावरण के लाने अपन को कछु ना कछु करने आए गो, और जो अपनी प्रकृति हैगी यानी नेचर हैगी तो जा अपने हिसाब से नहीं चलेगी अपन को, बल्कि ई के हिसाब से चलने पर है गो।
2: बिल्कुल सही कही आपने, कैसे हम जो देखते हैं कि अगर अपन शादियों में भी जाते हैं दोस्तन से मिलते हैं तो अपन सेल्फ

0: समझन लगे और संगे संगे पर्यावरण जो प्रदूषित हो रहा है वाकी बचावे के लाने भी कम से कम सोच उनकी परिवर्तन हो जाएगी।
1: आपने देखो जा एक अच्छी बात कही हैगी कि फोटो डालबे को जमानो हैगो, तो ई पे एक बात और हम क्या वो चाहूंगे कि जैसे मान लो को जन्मदिन मनो, ठीक है जन्मदिन मनो, सो उनने का करो बढ़िया केक काटो, डीजे बजो और का कहती पार्टी अच्छी मनी, सो सब जने का कहे फोटो में डाल देते ही और
0: हाँ
1: वीडियो डाली फोटो अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे, फेसबुक के स्टेटस पे फोटो डाली पे, कि जो देखत कि कितने लाइक मिले और कितने कमेंट मिले, ठीक
0: बिल्कुल
1: है।
0: सही बात
1: अब
0: है।
1: मान लो बात चीज हमने देख ली है, तो हमने देख ली तो हमारे दिमाग में का चीज चले, एक चीज चले कि अब हमारा जन्मदिन आए तो हम इसे और अच्छो करें,
0: सही
1: जिसे
0: बात है।
1: कि हमारी फेसबुक पे इसे ज्यादा लाइक और कमेंट बढ़ गए। तो अगर अपन अपने पर्यावरण को बचावे के लाने भी ऐसी कोनो उपाय कर रहे हैंगे, तो आप भी उनको सोशल मीडिया पे यानी फेसबुक पे व्हाट्सएप पे डालो, ताकि आपकी पोस्ट को देखें, हो सका थे कुको एक नई उम्मीद मिलवे, नई दिशा मिलवे कि अरे भज्जा ई के लाने भी अपन को काम करने आउते, जैसे अपन हंसी खुशी के पल तो सभी जने अपने दोस्तन के संगे बांटा थेंगे, तो अगर पर्यावरण कहे कि अपनो ही सबको है वो है ना, और इसे अपन और जिंदा हैंगे, अपन और खुली हवा में अगर सांस ले पा रहे, तो ईखो सांस लेवे के लाने बनाने भी तो आए अपन को शुद्ध
0: सही बात
1: बिल्कुल
0: है,
1: एकदम। तो
0: बिल्कुल
1: ऐसे कि जो पोस्टें अपन फालतू की करते ही काम की भी पोस्टें करवे।
0: सही बात है, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कही हैगी। और संगे संगे एक बात हमारे मन में और चल रही हैगी, कैसे जब हम सवेरे आ रहे थे तो जान जो खुले जानवर नहीं रहेंगे रोड पे फिरत रहेंगे,
1: हाँ
0: तो वे पन्नी जो रहते हैं पॉलीथीन उनको खा रहे थे, तो उन्हों खावे से उनके स्वास्थ्य पर जो डॉक्टर बताएंगे कि यदि पन्नी जानवर खा लेतेंगे तो उनके शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान होते है और संगे संगे हमारे पर्यावरण को भी बहुत ज्यादा नुकसान होते है वो।
1: अरे नुकसान की ना कहो मनीष भैया, तुम पता का होते ही अगर जानवर ने पन्नी खा ली तो भी उनकी आंतन में चिपक जाती
0: हाँ
1: है
0: बिल्कुल।
1: और भी निकरवे को तो कोनो चांस रहते ही नहीं है। तो इसे अपन पन्नी को कम से कम कितने अपन इस्तेमाल कर सकते हैं, ऊपर अपन को ध्यान देने की जरूरत हैगी।
0: बिल्कुल सही कही है कि बिल्कुल ध्यान देवे की बिल्कुल जरूरत है कि, और ध्यान की बात आई तो अपन वेर भौजी को सुन लेते हैं, वे भी कछु किया वो चाह रही हैं पन्नी को रोक लगावे के लाने, उनने भी बहुत अच्छा प्रयास करो है। तो चलो अपन बैरव भौजी को सुनाते हैं, लेकिन कछु देर बाद सुनाते हैं, एक लोकगीत को अपन सुन लेते हैं, बाकी बाद कार्यक्रम में हम बैरव भौजी को सुनेंगे।

0: आप मनीष भैया अपन और अन्य अभय दिनेश मस्ताना जी और उनके साथियों की आवाज में इन्होंने से लोकगीत को सुनो है वो, और हमें लगा था कि आप समय ना गवात भाई अपन को बेरू भोजी को भी सुन लें चज्जी का भी अपन को बहुत ही उम्दा जानकारी दे रही है।
1: तो चलो अपन सुनते हैं बेरू भोजी की जरूर नाटक को।
2: कल्लू के पापा हमें लगा नेकर गए।

0: रात भर चिल्लिया चिल्लिया के हट जात, भुनसार है जल्दी आ जाओ, भुनसार है जल्दी आ जाओ, लाइट भी चली जात, हाँ सोते जाने के दे, तीनों बैठी रहते ही, अब आन दो रुक जाओ फिर मैं बता दूंगी, मुझे इतनो काम डरो, मुझे आज सब्जी भाजी नहीं है बिल्कुल घर में, क्या गोले बना लूं मैं अपने घर में, मेरी तो समझ में नहीं आती कि मैं करूं का, इनके माँ इतने परेशान हो गए, ओ कलुगा कितने मर गए, ऐसे मोड़ी मोड़ा हो गए बिल्कुल।
1: तुम्हें तो उठत बैठत गलत रहे जीत, का बात है बता, काय को बुलाओ?
2: मैंने काय को बुलाओ?
1: और कलुगा तो गाओ तो तीरथ,
0: तो मैंने तुम्हें बुला भी खिलाने गई थी देखा को, अब घर में कछु नहीं है खावे, मैं कहाँ करूँ बताओ, मैं कहाँ बना लूँ, मैं तो पूरी जिंदगी
1: तो उसे तना कछु कर सोते हैं तो फिफ्टे बताने लगा।
0: आओ तुम्हें तो यानी फिफ्टे दिखा रहे, मैं बताओ कछु नहीं है घर में आज खावे, मैं कहाँ बना लूँ मोड़ी मोड़न खिलाने।
1: अरे तो ऐसी कही तो जात कछु बात की,
0: तो मैंने रात में कही नहीं आती क्या तुमसे?
1: अब मैं सो गाओ तो रात के हारो थको, तू पतो ही है चाही से लगी बड़बड़ा भी, मैं रात है तो पानी भरा भी जात,
0: तो तुम पानी भरा रहे, मैं घर को काम तो कर रही होंगी, कौन का चूमे पर ही रथ होंगी।
1: अरे तो बताई तो जात, मैं सवेरे तो आ गया तो खाए नहीं गई, अब मैं लाए सब,
0: अब तुम रंदो तुम पानी को चले जाओ, मैं चली जाऊंगी लालाजू के संगे,
1: अब तेने किचन गार्डन तो लगाओ तो बाह में नहीं हो सब्जी,
0: तो हो तो जात है ये आपका रोज के रोज, मैं बाद में बेच आई थी इकट्ठी, अब पानी डाल दो फिर से वही जाओ, तुम
1: बेच भी की जरूरत घरे चाहे हुए चाहे ना हुए,
0: तो मैंने पूछ तो ली थी तुमसे कि मैं बेच दूं कि नहीं बेच दूं, मोए पे चढ़ यार बिल्कुल।
1: अरे तो अब जितने पैसा जैसे बेच बेच मिली थी, अब इनसे फिर से खरीद लो तनक मनक,
0: तुम्हें पैसा खो रही क्या?
3: अरे अरे का होगा भाजी, काय लगे भौजी घुमा रहे हो, कल कह रहा तो कि मम्मी घुमा रहे पापा काय मार रहे बेटा,
1: तू तो तनक में खबर पड़ जाते ही तो मूड पे चढ़ाए जाए।
3: अरे भज्जा ऐसी कछू बात नहीं है क्या, हम तो तनक जो देखा था के का हाल चाल चल रहा अपनी भौजी के भज्जा को का घर को कैसे का हाल चाल है,
0: तो लालाजू मैं इनसे कह रही थी कि बिल्कुल सब्जी भाजी नहीं आती, तो अब लालाजू मैं का करूं, मैं का बना लो रोज की रोज, ये मोई पे बड़े बिल्कुल 24 घंटा मोई पे गुस्सा होते रहते बिल्कुल।
1: देख ले जाए तो केवल बहानों से जिद लड़बे को,
0: कबे लड़ी मैं बताऊं कहूं लड़ी, आज ही तो लड़ी हो,
1: अब कैसे चीप के बता रही, देख लेते हैं देख
3: लेते हैं, शांत हो जाते हैं, काय लगी भज्जा ने तनक, अब हार थको है तो आदमी को तनक कछु के है तो चेंटा तो जरूर ही आदमी, अब
0: हाउ सबरे मुंह पे उतरत बिल्कुल गुस्सा में, तो बिल्कुल ऐसी आई होंगी।
1: अरे अरे चुप हो जा अब नहीं रो, हाँ सही तो कह रहा और वो,
0: हाँ वो तो आप सही कह रहे, अब तुम दो जने जुड़ गए होंगे, अब मेरी को है वो पिछले भी।
3: अरे भाजी ऐसी कछु बात नहीं है, को उसे नहीं मिल रहा हो, जो है कि अब जैसे कोनो आदमी हार थकवा तो बात पूछे के का पानी पीने के का खाने, और तुम और उल्टी गाड़ी हो सुना लगो तो आदमी को दिमाग खराब ना हुए।
0: अच्छा और मैं दिन भर की काम कर रही हूँ, मैं कछु नहीं है, मैं को नहीं पूछे भज्जा ने एक बार पूछे कि मैं दिन भर कहाँ करत होंगी।
1: हाँ मुझे तो पता है कि ते घूमे भी जात लालाजू के संग में, अब तो शांत रहिए, अगर रोई गाई अगर मुझे पतो चला गाओ फिर मैं शाम के बताऊँ तुझे।
0: हाँ मुझे काकन ने रोके, मुझे सब आराम से मिलत रहे, सो मुझे काकन ने चार बातें करके,
1: अब ठीक है लालाजू तो है सो इनसे मंगा लीजिए जो कमी पड़े सो।
0: लालाजू देख लो तुमने अपने भज्जा को जी है इनके हाल।
3: अरे भौजी घर में ऐसा नहीं हो, तना तुम शांत हो जाओ करे, भज्जा कहूँ गुस्सा हो तो तुम हो जाओ शांत, कहूँ बे हो जाओ करे शांत, ऐसे चलत घर बार।
0: हाँ तुम हो सो तुम हम ये डॉक्टर लगे होंगे, अब मैं बाजार जा रही थी। हाँ
3: बाजार जाने?
0: हाँ
3: अरे बाजार ही तो मैं जा रहा हूँ, तो वो कल पहुँच गया मम्मी को मार रहा पापा है, मैं तो ऐसी सुनी से दोबारा भगत आओ तो रोटी नहीं खा पाई,
0: काले भी जा रहे थे मुझे तो सब्जी ले भी जाने लालाजू, चलो मैं तुम्हारे संगे।
3: अरे तनक मुझे राशन ले आने तो घर को, धनु कह रही थी कि वो चून बड़ा गाओ तो एक बोरी ले आने, चून मुनो वो तनक मसाले ले आने थे।
0: हाँ ठीक है तो फिर चलो, फिर मैं अभी चल रही संगे नहीं चलेंगे, अभी तो तू जाने मंडी तक ले लो लालाजी, तुम ले लो हम ले लेते तो सब्जी।
3: हाँ भाजी मैं बगल की बापा सेट की दुकान से जो सौदा लेता हूँ तनक,
4: हाँ मसाले हाँ। लेने तो तनक
3: वो लेने तो आटो लेने तो
0: ले आओ हाँ, ले आओ ले आओ और मैं लाए ले खाऊंगी भज्जा जा सब्जी तो क्यों का भाव दई? अच्छा आलू है का भाव दई? 10 रुपया किलो दे दू मैं ठेला में डाल दू लो डाल दू।
3: अरे भज्जा जल्दी कर तनक भाजी और हमें चेक चेक करने लगे का टेम का दो जल्दी दे दो तनक मसाले दे दो। अब काय में दे रहे? अरे पन्नियाने में दे दो तुमसे कितनी दार कही, अपन घर से हम हमेशा झूले ले आए, पन्नियाने में दे दो जल्दी भौजी और हल्ला करे ले आओ जल्दी रख दो ले जो पैसा अपने चलो भाजी ले ले हमने सब्जी
0: का कह रहे लाला जी अबे और रुकने कितने टाइम हो रुकने?
3: अरे लेब गए मसाले मसाले सब जो ले लो 5 किलो
0: लेब गए?
3: हाँ लेब गए।
0: अच्छा हाँ और काय में रख लो सामान?
3: अब जो पन्नियाने में रख लो काय में?
0: लालाजू मैंने कही थी बाद ना भी तुम्हें समझाई थी कि पन्नियन में अभी आधी दूर तक जाने से पूरी फट जाने, और दूसरी अपने जो कितना नुकसान हो रहा है पन्नियन से पर्यावरण को। मैंने समझाई थी तुम्हें।
3: अरे भौजी क्या करूँ, ख्याल नहीं रहता का घर से आता ना, जल्दी जल्दी में नहीं रहा।
0: जब लाला जी तुम ही नहीं करोगे तो फिर और को अपने और पड़ोस में तो कोई कर भी वालो नहीं है। बताओ जब तुम ही नहीं कर रहे, अब मैंने बांधना भी तुम्हें समझाई थी, आज भी कह रही, अब तो ध्यान रखियो कम से कम पन्नियन से। ये बात ना देखो, तुम्हारी गज्जा ने खा ली थी पन्नी, मर गई थी बाकी नहीं मर गई थी।
3: जा तो यानी सांसी कह रही, तो अब पक्के में ध्यान रखने आपकी राशे में, जब भी यहाँ तो झूला लेके।
0: हाँ तो लाला जू अब चलो चलेंगे, तो फिर ब्लैक टाइम होगा कार के, मैं तो आज पूरा भज्जा लड़ पड़े, सो दिमाग खराब है, वो टेंशन में है पूरा दिमाग।
3: अब तो भाई जी अब जावा छोड़ते हैं लड़की ना, अब शांत रहिए घर, हल्ला ना करिए।
0: देख तुम याद रखियो अगली बार से पन्नी ना ले आज बाजार में,
3: अगली बार से तो झूला ही ले आऊं मैं।
4: आहा मजे ही आ गए राम धई, बेरू भौजी जो बातें अपन को बताती हैं एकदम सटीक रहती हैं और एकदम सही बात, बिल्कुल फिट बैठवे वाली बात बताती हैं, बहुत अच्छी बात लगा था मैं उनकी।
5: सही कही कैसे उनने हमें बेरू भौजी के जा नाटक में तीन चीजें हमने समझी हैंगी। एक तो जा समझी है कि सबसे पहले हमारे जो महिलाएं हैंगी उनको बचत करवो बहुत जरूरी।
4: अच्छा तुम जो बताओ हमें एक बात, महिलाएं नहीं खो का जरूरी है गो?
5: महिलाओं को जासन जरूरी है। हाँ। यदि पुरुष उनके घर से बाहर चले गए हैंगे। हाँ। या कि तुम गांव में बैठे हुए चले गए हैंगे और सब्जी की जरूरत पड़ रही हैगी, तो बैठी हैं ये लोग जब तक वे यहाँ
4: बैठे सुबह, उनके हाथ में भी तो बात है ना पैसा टका,
5: तो वो आजकल
4: मनीष भैया आप जो गलत बात कह रहे, अब वे महिलाएं नहीं रही पहले जैसी के घर ही में रहती और आदमी को इंतजार करती कि जब वे आवे, जब वही पैसा खे, जब हम कछु सामान ले। अब तो देखो पूरे हिसाब किताब उन्हीं के हाथ में रहते, और अपनी बहनें खुद इतनी सक्षम हो गई कि वे अपने पांव पे खड़ी भी हो रही।
5: सही, वो तो बात सही है कि कैसे अब बहुत सारी योजना और बहुत सारे समूह के माध्यम से महिलाओं को अपने सशक्त करो जा रहा है, बहुत अच्छे माध्यम है। और संगे संगे जो समूह के माध्यम से बचत की बात होती है और साथ में आपसी जो बातचीत हो देगी, बात है अपने बहुत सारी हमारी बहनों को बहुत लाभ भी मिलो है गो। जो बात तो हम के वो सही बात है तुम्हारी के हमारी बहनें सशक्त हो रही और मजबूत हो रही हैं, लेकिन अभी भी कछु गांव में जब प्रथा भी हैगी के वे जब तक उनके आदमी नहीं आएंगे तब तक वे घर से ना तो बाहर न करती हैंगी, और सब्जी की तो बात छोड़ो, वे उनके पास पैसा भी नहीं रहते, बच्चन की पढ़ाई के लाने भी वे उन हमारे जो मुखिया रहेंगे उन पे आश्रित हो जाती हैं, तो हमें बचत हमारे जीवन में बहुत जरूरी है।
4: तो देखो हम ही में जाके वो चाहूंगे कि बचत जानी कह सकत आपके केवल महिलाएं के लाने जरूरी है बल्कि सब जनन के लाने, हम सबके लाने बचत बहुत ज्यादा जरूरत हो देगी। हाँ तो दूसरी बात का सीखी,
5: दूसरी बात हमने जा सीखी के सब्जी तो देखो इतनी महंगी हैगी,
4: बिल्कुल
5: हमारे जो घर पे महीने बैठी रहती हैगी, तो वे एक काम कर सकती हैं, जैसे अपन ने पहले किचन गार्डन नहीं बताओ उन्हों कि किचन गार्डन को कॉन्सेप्ट बताओ तो कि किचन गार्डन हमारे बहने कैसे लगा सकते हैं अपने घर में, तो बामे का हो तो एक तो बचत होते है, बचत कैसी बचत होते है, जैसे पड़ोसी के पास गार्डन नहीं है या घर में आंगन नहीं है उनके पास, तो पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के यहाँ लगा के उनसे सब्जी ले सकते हैंगी, तो सब्जी का ऐसे बहुत महंगी रहतेगी, तो अगर छोटी छोटी हमने पौध ले आके हाट से पौध ले आके या बाजार से पौध लगा के अपने आंगन घर आंगन में लगा दीगी, बासे अपने परिवार को भी खर्चा चलेगा, अपने पड़ोसियों को खर्चा चलेगा और अपन को ताजी ताजी सब्जी अपन को मिलेगी।
4: जा तो आपने ऐनी नोनी बात कही हैगी कि अगर अपन घर में किचन गार्डन जैसी लगाऊ थेंगे तो जो छोटी छोटी सी चीजें रहती बहुत मामूली सी, जैसे कि अपन ने टमाटर लगा लाए, मिर्चें लगा ली, धना लगा ले और का कहते हैं
5: भटा
4: हाँ भटा लगा ले और मैं उई में एक दो गोभी लगा लो। हाँ। धीरे धीरे करके ऐसी चीजें अपन लगाते रहो अगर तो भी एक दिन आपको इतना फायदा दे, फायदा मतलब ऐसा नहीं है कि डलियन बांधी आप बेची आओ, ऐसा फायदा कि अपन को ताजी सब्जी घर की मिलेगी वो बिना केमिकल वाली,
5: बिल्कुल
4: बाजारन में जो मिल रही वह केमिकल वाली सब्जी मिल रही हैगी, तो अपन एकदम कत नहीं है कि शुद्ध खाओ और स्वस्थ रहो।
5: सही कहा,
4: तो ऐसो अपन को महसूस भी हो लगे है गो, तो आप जो कॉन्सेप्ट जो है गो किचन गार्डन को वो भी आप अपना सकत हो।
5: और तीसरी बात हमने सुनी हैगी और अच्छी लगी हैगी के भौजी बाजार में गई है थी और उनने खूब मना करी कि भैया पॉलीथीन को इस्तेमाल हमें नहीं करने है गो, खासतौर पे हमने पहले भी शुरुआत में बता

0: ये थी कि काहे से पॉलीथीन को इस्तेमाल करवे से पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान है, जानवरों को नुकसान है और हमें आपको तो है ही जो नुकसान है, तो जीव आदरण को हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना है वो।
1: तो देखो, जा तो बात आप सही कह रहे हैं, तीसरी बात जो आपने सीखी हैगी, काहे के पन्नी से अपन को खुद को नुकसान होते है गो, अपने ढूर बच्चे जो फिरत रहते हैं बेचारे, देखो भी तो काऊ से कह नहीं पा रहे हैंगे हैं, उन्हें तो जब भूख लगा थेगी सुबह तो पन्नी में बंदो मिला सामान सुबह पन्नी समेत खा जात, काहे के भी गठान तो खोल नहीं सका थेगी।
0: सही बात
1: तो
0: है।
1: एक तो हमोरन की खुद से गलती जा रहा थेगी में, कि जो भी खाबे पीबे को सामान जब अपन बाहर फेंका थेंगे तो एक तो उन्हें ऐसे ना फेंको बिल्कुल भी पन्नी में बांध के, खास तौर से काहे के गन्ना बच्चे जो हैंगे भी पन्नी उठा के पूरी खा ले उठेंगे। तो खाबे की चीज अगर हैगी तो आप खुले में ऐसी रखो कि आपको पता हो कि हाँ इतने जो डूर बच्चे रोज आउ थे गो और इतना वो खाबे के लाने खड़ो होते, तो एक बढ़िया सा पत्थर रख दो सो ऊपर आप वो खाबे को सामान रख दो और जिमे वो डूर बच्चे हुआ है वो खेओ अपनो चलो जाए, जो नैया के पन्नी में बांध के आपने फेंक दो सो बस वो तो पका है उखो तो खावे की वो है भूख है, पेट में जब भूख लगा तो कछु नहीं दिखाता है सो वो पन्नी समेत खा जाऊ थे। और दूसरा अपन को पर्यावरण से भी इससे काफी फायदा मिले है वो जब अपन पन्नी को इस्तेमाल कम करेंगे। देखो पहले की समय की अगर बात करें तो पहले अपने जो पुराने लोग हते जो दादा परदादा या नाना नानी हते, हमेशा जब भी बाजारे जाते तो कहते ल्या बेटा वो थैला दीजिए बाजारे हुए आए, लेकिन अब वो चलन नैया अब का कहते के रंदो ऐसे खाली चले जा रहा है वो तीन सौ पन्नी इनमें डांग ले आए, तो अपने ही हो रहे हैं कितों ना कितों इन चीज को खराब कर रहेंगे। तो अपन को वो खराब नहीं करने हैं, अपन को कह नहीं रहे हम के संगे संगे जो भी ध्यान रखने के, अपन को अगर खुली हवा में सांस लेने हैं गो तो अपने पर्यावरण को ध्यान अपन को रखने आए और अपन को ई के हिसाब से चलने आए, ना कि पर्यावरण अपने हिसाब से चले गो।
0: बिल्कुल सही कही वैसा। और हमने तीन चीजें सीखी सो आपको हमने बता दी हैंगी, और अब हमारे साथियों ने का सीखो है भी हमें बताएं, कैसे हम हमारा समय भी हो रहा जा कार्यक्रम शुभ कल से जाबे को, तो उनने का सीखो है गो भी हमें बता सकत हमारे जा नंबर पे।
1: साथ ही हमारा नंबर है 92 19 20 77 49।
0: और साथी रो आपके कार्यक्रम में जब हम आएंगे तो हम आपको पूछेंगे आपसे कि आपने हमारे जो कार्यक्रम हते उनमें आपने काशी को है गो, तो जरूर शामिल हो हमारे जय कार्यक्रम में, अपने सुझाव जरूर दे होगे और संगे संगे आप हमें बता भी सकते हैं कि और कार्यक्रम में का अच्छो लगो और कौन विषय पर आपको बातचीत को सुनने हैं, तो वह विषय को लेकर हम कार्यक्रम में हाजिर जरूर होंगे।
1: बिल्कुल, तो आप अपन चला थेंगे आज के कार्यक्रम से, फिर हुई मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक के लाने नमस्कार।
0: नमस्कार। शुभ कल बदलती जलवायु के लिए तैयार हो।

0: कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपके रेडियो दोस्त वर्षा
1: और मैं हूं आपका रेडियो साथी मनीष।
0: लेकर हाजिर हैं आपका कार्यक्रम हम होंगे कामयाब। श्रोताओं आज हम होंगे कामयाब में हम बात करेंगे व्यक्तित्व विकास की, कि जो हमारा व्यक्तित्व विकास है उसके लिए हम कुछ टिप्स आपके लिए लेकर आए हैं और जो बहुत ही ज्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं आपके लिए अगर आपने सही तरीके से उनका इस्तेमाल किया तो।
1: क्योंकि देखा जाता है कि जब तक आपका व्यक्तित्व विकास नहीं होगा तब तक आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि बहुत सारे ऐसी जगह रहते हैं जहां पर आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, यदि आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपका अच्छा है, बोलने का तरीका अच्छा है और क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखना चाहिए, ये बातें अहम रहती हैं जब तक जब आप किसी बड़े इंटरव्यू के लिए जाते हैं या फिर आप नए करियर की शुरुआत करते हैं। तो कुछ बातें हैं जो हमें बेहद जरूरी जानना है, क्योंकि देखा जाता है कि कैरियर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कुछ बातें रहती हैं व्यक्तित्व विकास के लिए। सरल परिभाषा में कहा जाता है कि व्यक्ति के आचरण, व्यवहार, शिक्षा, योग्यता, शालीनता, पहनावा, उदारता, त्याग, क्षमा, बौद्धिकता जैसे तत्वों को अपनाकर जो अपनी छवि को औरों से अलग प्रस्तुत करता है उसे

0: व्यक्तित्व विकास कहा जाता है।
1: इसके साथ ही साथ जिंदगी के प्रत्येक क्षेत्र में यदि आप किसी को भी प्रभावित करना चाहते हैं तो आपको बेहतर प्रदर्शन करने होगा। इसके लिए आपको किसी को भी आकर्षित करने का हुनर आना चाहिए। यह तभी हो सकता है जब आपके अंदर श्रेष्ठ गुणों का समावेश हो। अब हम आपको बताते हैं कि वह गुण या टिप्स कौन से हैं।
0: सबसे पहला होता है कि संतुलित एवं सुंदर आपका शरीर होना चाहिए। ये आपको बताता है, आपके व्यक्तित्व को पहचानता है, क्योंकि संतुलित शरीर से व्यक्ति की पहचान होती है, जिससे व्यक्ति के हाव भाव, चाल चलन, उठने बैठने और कार्य करने की क्रिया का पता चलता है। इसलिए शरीर हमेशा ऊर्जावान होना चाहिए तथा थकावट और आलस्य जैसे अवगुण आपके शरीर में नहीं होना चाहिए।
1: इसके बाद आपको शरीर की बनावट पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि आप जिम जाकर सिक्स पैक बनाएं, अपितु ना अधिक मोटा ना अधिक दुबला होना चाहिए। आप नियमित संतुलित आहार लेकर एवं नियमित व्यायाम करके संतुलित शरीर का विकास कर सकते हैं।
0: सुंदरता किसी को भी आकर्षित करने का केंद्र होती है। इसमें शरीर के काले और गोरे रंग का महत्व तो नहीं होता है। इसके लिए आपको शरीर के नाजुक अंगों जैसे आंख, बाल, नाखून, त्वचा आदि का विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। इसके पश्चात साफ, स्वच्छ, कंफर्टेबल और फैशन के अनुसार कपड़े पहने, लेकिन फैशन की आड़ में फटे हुए और बेशर्मी वाले कपड़ों को परहेज करें, क्योंकि इससे आपका व्यक्तित्व नीचा होता है। आपको बता देना चाहते हैं, दूसरा गुण आपके अंदर उत्तम विचार होना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी के सामने अपनी बात को रखते हैं तो आपके विचारों को देखा जाता है कि आपके विचार किस तरीके से हैं।
1: बिल्कुल, और विचारों से ताकतवर कोई और हथियार नहीं होता, यानी कि विचारों से ज्यादा ताकतवर कोई और दूसरा हथियार नहीं होता है। विचारों की वजह से ही व्यक्ति को नई दिशा मिलती है और यह कुछ भी करवा सकती है। अच्छे वातावरण में रहने से, अच्छी किताबें पढ़ने से, खुली जगह में वायु का सेवन करते रहने से सरलता से ही हमारे मन को अच्छे परिणाम मिलते हैं और वे परिणाम ही हमारे विचारों का निर्माण करते हैं।
0: इसके अलावा आपका विद्यालय उत्तम हो, जिससे आपको उत्तम शिक्षा मिलेगी और आप में उत्तम विचारों का समावेश होगा, और साथ साथ में पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए विचारों का अहम योगदान रहता है। इसके लिए आपके विचार अच्छे होना चाहिए। जब आपके विचार अच्छे होंगे तो सामने वाला या इंटरव्यू लेने वाला आपसे प्रभावित होगा और आपकी आत्मविश्वास को जगाएगा। आत्मविश्वास का होना ये भी बहुत ज्यादा बड़ी बात होती है, और एक अच्छी बात होती है कि आत्मविश्वास आपके अंदर होना चाहिए कि हम ये काम को कर लेंगे।
1: बिल्कुल, यदि आपके अंदर किसी काम में पूर्ण योग्यता होने के बावजूद भी उस काम को लेकर से इनकार कर देता है, या आपको किसी विषय का पर्याप्त ज्ञान होने के बाद भी उसे किसी के सामने व्यक्त नहीं कर पाते हो, इसका प्रमुख कारण है आत्मविश्वास की कमी। जी हाँ श्रोताओं, इसलिए आत्मविश्वास हासिल करने के लिए अपने गुण अवगुण का विश्लेषण कर अपने व्यक्तित्व के अंदर मौजूद कमियों को दूर करना चाहिए। इसके अलावा यदि आप अधिक शर्मीले हैं, हीन भावना से ग्रस्त हैं, अभिमानी हैं, या आप में किसी का भय है, तो आपको इन कमियों को जल्द से जल्द दूर करना चाहिए। जबकि किसी इंसान के अंदर मौजूद गुणों से ही उसका व्यक्तित्व बनता है, इसमें आत्मविश्वास बहुत ही आवश्यक है। युवा पीढ़ी में इस गुण का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका भविष्य सामने होता है। अतः आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आपके भीतर आत्मसम्मान, प्रतियोगिता में भाग लेना जैसे गुणों का समावेश होना चाहिए, जो कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बेहतर है।
0: दोस्तों, और भी बातें हैं जो आपके व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत जरूरी हैं, जैसे कि विनम्रता अपनाएं, बातचीत की कला, सुनना या कम बोलना सीखें। ये सारी बातचीत जो रहती है आपके व्यक्तित्व को निखारती है। ये बातचीत आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत जरूरी रहती है। मित्रों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले हम एक अच्छे से लोकगीत को सुन लेते हैं, इसके बाद बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे और भी व्यक्तित्व विकास के जो टिप्स हैं व्यक्तित्व

0: बाद एक बार फिर से स्वागत है श्रोताओं, कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में, जहां पर हम बात कर रहे हैं व्यक्तित्व विकास की। अभी हमने बात की श्रोताओं के आत्मविश्वास होना चाहिए हमें खुद पर। आगे हम बात करेंगे कि विनम्रता अपनाएं। बिल्कुल श्रोताओं, आपकी वाणी में मधुरता का स्वर होना चाहिए, जिससे आप अनगिनत दोस्त बना सकते हैं। इसके ठीक उल्टा अनगिनत दुश्मन भी आप, इसलिए आप कभी भी अपनी शिक्षा प्रतिभा योग्यता को ओढ़ते हुए किसी से बात ना करें, अपितु ऐसे बने रहें कि हर कोई आपसे मिलने की एवं बात करने की चाह रखे। इसके साथ ही साथ आप गुस्से पर काबू रखें और किसी कमजोर व्यक्ति का मजाक ना बनाएं। मजाक उसी का उड़ाने में मजा है जो अपने को आपसे ज्यादा ताकतवर समझता है। इसी गुण से व्यक्तित्व विकास में इजाफा होता है।
1: ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि विनम्रता अपनाए के साथ साथ हमें बातचीत की कला भी होना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी के सामने बातचीत करते हैं तभी आपका व्यक्तित्व पहचानता है कि आप किस तरीके से बात कर रहे हैं। तो आप किसी साधारण व्यक्ति से बात कर रहे हैं या किसी पोस्ट ग्रेजुएशन व्यक्ति से आपको बातचीत करने के दौरान बार बार आंखें मटकाना, शर्माना, अटकना और मुख मुद्रा बिगाड़ने से बचना चाहिए और अपनी बॉडी लैंग्वेज का उपयोग कर नेत्र संपर्क बनाए रखना चाहिए। बहुत बड़ी बातचीत होती है, ये एक कला होती है व्यक्तित्व विकास की, ये कला होती है आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, क्योंकि बातचीत के वक्त आपकी एक निश्चल मनमोहक प्यारी मुस्कान किसी भी व्यक्तित्व पर विशेष प्रभाव डालती है। लेकिन आपकी यह मुस्कान नकली या बनावटी ना लगे, यह नेचुरल रूप से शरीर के अंदर से आनी चाहिए। आपकी एक मुस्कान सामने वाले व्यक्ति के अंदर आपकी सैकड़ों तारीफें बयां कर देती हैं, इसलिए आप मुस्कुराने का प्रयत्न कीजिए। इसके अलावा आप अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों से मिलते हैं और कुछ दिन बाद भूल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिल पर गहरी छाप छोड़ जाते हैं। इसे रचनात्मक कहते हैं। और आप शायरी, लघु कथा, घटना, दुर्घटना, कहावत आदि से अपनी बातचीत में रचनात्मकता शामिल कर बेहतर प्रभाव

0: आप डाल सकते हैं।
1: बिल्कुल, ऐसे और कई सारे ऐसे टिप्स हैं श्रोताओं, जो आप सबके लिए बेहद फायदेमंद साबित होने वाले हैं। एवं यहाँ पर हम बात करेंगे सुनना और कम बोलना सीखें, क्योंकि कई बार होता क्या है श्रोताओं के, हम बोलते जाते हैं, हम सामने वाले की बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छी बात है कि हमें सुनने की भी आदत डालनी चाहिए। यह वास्तविकता हमारी जिंदगी से करीब करीब समाप्त हो गई है। आज हम किसी व्यक्ति की बात कम सुनते हैं पर ज्यादा बोलते हैं। अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो उसकी बातों पर पूरा फोकस करें, और जिस विषय पर चर्चा हो रही हो उससे संबंधित अगर आपके मन में कुछ प्रश्न हो तो अवश्य पूछें।
0: वार्तालाप के दौरान आप बीच में दखल ना दें और ना ही रुकावट बने। समझदारी से बात करें एवं बीच बीच में आप अपना सिर हिलाएं और जी हाँ अवश्य कहें, जिससे सामने वाले व्यक्ति को यह महसूस होना चाहिए कि आप उस व्यक्ति की बात गंभीरता से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। हालांकि आप जितना हो सके चुप रहें, क्योंकि ज्यादा बोलने वाले और खुद की तारीफ करने वाले व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता है। आप एक पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति बनिए, जो जरूरत के वक्त अपनी बात को व्यक्त कर सके। चुप रहने वाले व्यक्ति या कम बोलने वाले व्यक्ति से हमेशा लोग बातचीत करने के लिए उत्सुक रहते हैं, और इसी वजह से कोई भी व्यक्ति बेहद आकर्षित होकर उस व्यक्ति के बारे में जानना चाहता है जो व्यक्तित्व विकास के लिए एक अच्छा गुण रखता है। तो ये बातें रहती हैं जो आपके व्यक्तित्व विकास को निखारने में बहुत ज्यादा जरूरी रहती हैं, क्योंकि इन बातों के बारे में आप यदि आप सोचते हैं, ये बातें आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रहती हैं। आप सामने वाले को माफ करना या माफी मांगना सीखें, ये भी एक तो व्यक्तित्व विकास का एक पहलू रहता है। इसका भी हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई भी अपमानित आपको करता है, अपशब्द कहता है, बुरा व्यवहार करता है, तो आपके मन में उस व्यक्ति के लिए नफरत पैदा हो जाती है। ऐसा होना ही नेचुरल है, लेकिन कुछ समय बाद उसको अपनी गलती का एहसास होता है, वह आपसे माफी मांगने आता है, और आप उसे मुंह मत मोड़िए और उसे तुरंत माफ कर दीजिए, क्योंकि वही व्यक्ति माफ करता है जो अपने तन मन से घृणा, बुराई, कलेश को दूर करना चाहता है, अपने दिल में पवित्र करना चाहता है। इसके ठीक उल्टा, यदि आपसे कोई गलती हो जाए तो आप माफी मांगने से पीछे मत हटिएगा, क्योंकि जिसमें सीखने की असीमित क्षमताएं होती हैं वही व्यक्ति माफी मांगता है, और माफी मांगने से आपके अंदर एक नई ऊर्जा का निर्माण होता है जो सर्वोच्च व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत ज्यादा अहम रहता है।
1: बिल्कुल सही कहा है आपने। तो कभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके द्वारा या किसी और के द्वारा कोई गलती हुई है और अगर सामने वाला आपसे माफी मांगने के लिए आ रहा है तो उसे माफ भी कर दें। अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो आप भी उससे माफी मांग सकते हैं। ये हमारे एक व्यक्तित्व विकास की बहुत अच्छी कड़ी होती है जिस पर हम कायम रह सकते हैं। आगे अगर हम बात करें सकारात्मक नजरिया, यानी कि पॉजिटिव सोच हमेशा बना के रखें। सकारात्मक नजरिए से आशा यह है कि इस जीवन में अपने कर्तव्यों, निर्णयों, संकटों, उलझनों, रुकावटों, संघर्षों, दैनिक व्यवहारों तथा अन्य किसी भी कार्य में कामयाब होने के लिए आपका नजरिया सकारात्मक होना चाहिए। अगर आप निराशा से आशा प्राप्त करने के लिए आगे की ओर बढ़ते हैं तथा जिंदगी की समस्याओं से विचलित ना होकर समस्याओं का समाधान करते हैं, हर बुराई में अच्छाई की तलाश करते हैं, तो आपका नजरिया सकारात्मक है। इसके ठीक उल्टा अगर जाएंगे तो आप नकारात्मक नजरिए का शिकार होंगे, जो आपके वर्तमान एवं भविष्य के लिए खतरनाक है। नजरिया बुरा होने पर आपको सिर्फ कुछ समय के लिए खुशी मिलती है तथा लंबी खुशी के लिए आपको सकारात्मक नजरिया विकसित करना होगा, जिससे आप लंबे समय तक खुद को खुश रख सकते हैं और यही खुशी आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में निखार लाएगी।
0: ये बहुत जरूरी बात है, क्योंकि सकारात्मक आपका नजरिया है, यानी पॉजिटिव आउटलुक है आपका, तो आप दूसरों को खुश रख सकते हैं और उनकी खुशी में ही आपकी खुशी रहती है। इससे

0: आपका ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, यानी व्यक्तित्व जो विकास रहता है वो उसमें एक अहम कड़ी मिलती है। सीखना बंद तो जीतना बंद, यानी आप पता होगा क्योंकि व्यक्तित्व विकास में ये होना बहुत जरूरी है। आपने सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी के शो कौन बनेगा करोड़पति को सुना ही होगा आपने। सीखना बंद तो जितना बंद, ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि सीखता वही है जिसमें जीतने की उमंग होती है और जिसका दिल जवान होता है, जबकि सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती है। सीखना कभी ना खत्म होने की प्रक्रिया है, इसलिए सीखने के दौरान गलतियां ना करें और दूसरों की गलतियों से सीखें और अपनी गलतियों में सुधार करें।
1: इसके साथ साथ लगातार सीखने की अनवरत कला से ही आप नए नए लोगों से मिलते हैं, नई नई जानकारियां हासिल करते हैं और इसी कला से आपका व्यक्तित्व विकास होता है।
0: और आखिरी है, हम आपको बता देना चाहते हैं, ये कार में योग्यता, ये भी आपके व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अपनी रुचि एवं योग्यता के अनुसार एक निश्चय विषय या क्षेत्र का चुनाव कर उस पर अग्रणित रहें और आगे बढ़ने का पूरा प्रयास करें। जिस विषय को आपने चुना है सबसे पहले उसमें गहराई तक जाएं, उसके बारे में जितना ज्यादा हो सके ज्ञान प्राप्त करें। इससे हकीकत में यह होगा कि मान लीजिए अगर आपसे किसी ने आपके कार्य से संबंधित कुछ सवाल किए लेकिन आप उन सवालों का जवाब सही ढंग से नहीं दे पा रहे हैं, तो इससे आपका व्यक्तित्व लो होता है, यानी कमजोर होता है। अतः आप अपने काम में होनहार बनिए। इसके अलावा आपको देश विदेश के बारे में मनोरंजन एवं ज्ञानपूर्ण जानकारी रखना अन्य लोगों के मध्य आपको लोकप्रिय बनाता है।
1: आगे हम बात करेंगे अगर निष्कर्ष की, तो इस बात में हम आपको 0 लेवल से लेकर हाई लेवल तक में आने वाले हर वह खास टिप्स बताते हैं जिससे आप अपनी कमियों को आसानी से दूर कर सकते हैं।
0: यदि आपने अपने जीवन में यह खास टिप्स नियमित आधार से अपनी दिनचर्या में उतार लिए तो यकीनन आप खास पर्सनालिटी डेवलपमेंट के धनी बन जाएंगे। आशा करते हैं कि आपको यह लेख पर्सनालिटी डेवलपमेंट टिप्स, व्यक्तित्व विकास के टिप्स आपको बेहद पसंद आए होंगे। आने वाले समय में हम आपको और भी व्यक्तित्व विकास से जुड़ी बातचीत हम लेकर आएंगे। साथियों, इसी के साथ हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम से जाने का। तो आपको ये जानकारी हम जो दे रहे थे व्यक्तित्व विकास के बारे में, जो आपके लिए बहुत जरूरी रहती है जब आप किसी के पास बैठते हैं या इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो व्यक्तित्व विकास होना बहुत जरूरी रहता है हमारे युवा साथियों के लिए।
1: बिल्कुल, तो हमें उम्मीद है कि जो भी टिप्स हमने आप सबको बताए हैं उन पर आप काम करेंगे, यानी कि अपने व्यक्तित्व विकास में उनका उपयोग जरूर आप करेंगे, तो आपके लिए भी अच्छा होगा और हमारे लिए भी बहुत अच्छा होगा। अगर साथियों आप इन सबका उपयोग कर रहे हैं या फिर आपने इस कार्यक्रम को सुनकर थोड़ा सा भी अपने व्यक्तित्व में थोड़ा सा बदलाव किया है तो हमें जरूर बताइएगा फोन के माध्यम से, या फिर आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए कोई सवाल हमसे करना चाहते हैं तो भी आप हमारे साथ जरूर कार्यक्रम में जुड़ के और सवाल पूछ सकते हैं। तो इसके लिए हमारा नंबर है
0: 94-25-14-17-26।
1: श्रोताओं, जब कभी ये नंबर अगर ना लगे तो आप व्हाट्सएप पर इसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर ये कॉल लग सकता है। और आपको एक और बात बता देना चाहते हैं, हर कार्यक्रम में जो हम बता रहे हैं कि अब अपना रेडियो बुंदेलखंड सिर्फ अपने रेडियो सेट पर ही सीमित नहीं है, अब ये ऐप के माध्यम से हर जगह उपलब्ध हो चुका है। तो हमारे और भी जो श्रोता साथी हैं जिनको रेडियो बुंदेलखंड सुनने में परेशानी होती है, उनको आप इस ऐप की जानकारी जरूर दीजिएगा ताकि वो आसानी से रेडियो बुंदेलखंड को अपने क्षेत्र में सुन सकें।
0: तो अब हमारा जाने का समय होता है, आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात।
1: तब तक के लिए
0: नमस्कार। और चलते चलते आप सुनो इस प्यारे से लोकगीत को।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्कार। रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाली सभी सखियों को हम यानी कि वर्षा दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं और साथ में हमारे सखियों को बता देना चाहते हैं कि हम उनका पसंदीदा जो कार्यक्रम है हेलो सहेली वो लेकर आ गए हैं। और आप इस समय अपने अपने आसपास की जो भी बहनें हैं उनको भी बिठा लीजिए ताकि उनको भी पता चले कि आपकी आवाज जो है वो रेडियो पर आ रही है। और रेडियो पर आवाज अगर आ रही है आपकी पसंद का गीत भी आएगा। तो बिल्कुल सखियों, आपको बता देना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में अगर आप शामिल होना चाहती हैं और अपने मनपसंद लोकगीत की फरमाइश करना चाहती हैं तो हमें शुक्रवार के

0: करें हमारे नंबर 9425147326 पर, और कॉल करने के बाद आप अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करवा सकते हैं जिसको आप शनिवार को सुन सकते हैं। तो आइए हमारे साथ कुछ सखियां हैं जिन्होंने अपनी फरमाइश करी है और सुनते हैं उनकी मनपसंद फरमाइश को।
1: हेलो सहेली।
2: हेलो सहेली, नमस्ते दीदी।
1: नमस्ते, को बोल रही?
2: पार्वती वंश का सजनपुरा से।
1: बिल्कुल पार्वती जी, बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। बताओ का क्या वो चाहती हो?
2: दीदी का हमें एक वो सुना दो, एक गीत।
1: हाँ, कौन सा सुना दे?
2: बिल्कुल, मैं खेल जाती हूँ, तुम भी नगर जावे भाई दीवानी में, बारी हमारी जावे संध्या सरगम।
1: संध्या सरगम को है वो?
2: हाँ
1: बिल्कुल, यानी नो नो, हम जरूर सुनवा दें आपको। और बताओ पार्वती जी, प्रोग्राम कैसे लग रहा है रेडियो के?
2: प्रोग्राम बहुत अच्छे लग रहा है दीदी।
1: तो ठीक है पार्वती जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आपको जरूर सुनवा रहे हैं आपकी पसंद को जो लोकगीत। ठीक है
2: दीदी, सुना।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: का नाम?
1: पान कुआ है।
0: कितने से बोल रही?
1: मस्तापुर से।
0: अच्छा पान कुआ जी, तो मस्तापुर में क्या हो रहा हो आजकल?
1: आज लोकगीत अपनी पसंद को सुना।
0: ठीक है, तो हम आपको जो सुनवा रहे हैं अपनी पसंद को लोकगीत। ठीक है।
1: हाँ नमस्ते।

0: हेलो सहेली।
1: बोल रही
0: उमा देवी बोल रहा है मस्ता पैसे।
1: ठीक है तो आज बताओ कौन सा लुक पसंद है आपको?
0: हमें तू माशाल्लाह तमज्जा।
1: अरे वाह क्या बात है, तू
0: पंचांगे तो रानो। हाँ वही लोग गीत सुनने में
1: बहुत बढ़िया, तो हम आपको जरूर सुनवाए जो लोग गीत। ठीक है
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रही थी हमारी सखियों की मनपसंद फरमाइश को, और क्योंकि अब हमारा समय भी हो रहा है आज के इस कार्यक्रम से जाने का, तो हमारी जो सखियां इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाई हैं, अगर वो अगले कार्यक्रम में शामिल होना चाहती हैं तो हमें जरूर कॉल करें हमारे नंबर 94-25-14-17-26 पर। जी हाँ सखियों, और आपको कॉल करना है शुक्रवार के दिन। तो हेलो सहेली कार्यक्रम से जाने के दीजिए अपनी दोस्त वर्षा को आज्ञा, फिर होगी आपसे मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप इबेरा अपने रेडियो साथी माता दिन भैया के संग में। और दोस्तों, जैसे कार्यक्रम को समय भाव है सो हम लेके आ गए आप सब जन के लाने जो कार्यक्रम छिरिया बाड़ा। जी हाँ दोस्तों, सो साथियों, छिरिया बाड़ा कार्यक्रम में अपन बात करते हैं खेती किसानी के संगे संगे पशुपालन की। सो दोस्तों, आज अपन ई कार्यक्रम में पशुपालन की नस्लन को और पशुअन के पोषण पे उनके आहार पे अपन बातचीत करें। दोस्तों, बात करें पशु आहार शब्द, जैसे कि नाम से ही पता चल जाता के पशु की बात हो रही है, और पशु आहार यानी कि पशुओं की 24 घंटे में दी जाने वाली आहार, ऐसा आहार जो पशुओं को आवश्यक पोषक तत्वों प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट खनिज लवण विटामिन युक्त का उच्च अनुपात और उचित मात्रा में दी जाने वाली आहार, जो पशु की बढ़वार स्वास्थ्य अधिक दुग्ध देने में उत्तम क्षमता बनाए रखें। सो दोस्तों, पशुओं के लाने अपने आहार पे आगे भी बात करें और उनकी नस्ल पे बात करें। सो ये बातन के संगे संगे आप पहला एक बढ़िया से गीत को सुन लेते फिर आगे कार्यक्रम में। जी गीत को गा रहे हैं रामाधीन आर और रेखा राजी।

0: लाओ मोए कंगना जैसी पेरे देवरानी। देखो कितना बढ़िया जो गीत अपन सब जन ने सुनो है, गीत को आनंद लो है, गीत को गा रहे थे रामाधीन आर और रेखा राज जी। अब दोस्तों अपन चलते हैं अपने कार्यक्रम की ओर। तो दोस्तों आज के समय में पशुपालन एक बहुत अच्छी उभरता हुआ व्यवसाय है।
1: जी हाँ,
0: पशुपालन भी कृषि व्यवसाय की एक शाखा है जिसमें कई प्रकार के पशुओं को उनके दूध व अंडे व अन्य उत्पादों के लिए पाला जाता है। पशुपालन के लिए आपको पशुपालन की जानकारी होना अति आवश्यक है। यहाँ पर आप जानेंगे कुछ टिप्स जिसे आप पशुपालन जैसे कि भैंस मुर्गी भेड़ बकरी पालन आदि अच्छे से

कर सके, अधिक मुनाफा कमा सके। सो दोस्तों, अपन सबसे पहला अपने पशु की नस्ल को ध्यान से चुने। जी हाँ, अगर अपन कोनो सो भी पशु पाल रहे तो उनकी सबसे पहला नस्ल को ध्यान में रखें। खास तौर पर भैंस और बकरी पालन के व्यवसाय में जहां आपको पशु का दुग्ध व मांस बेचकर मुनाफा होता है, आपको अपने पशु की नस्ल का चुनाव काफी ध्यान से करना चाहिए। हर नस्ल का पशु अच्छा एवं ज्यादा दूध नहीं दे सकता, इसलिए आप पशु की नस्ल चुनते समय सावधानी बरतें। सो अपने पशु को अच्छे पोषण वाला आहार ही दें। अगर आप भी पशुपालन व्यवसाय से जुड़ने का मन बना रहे हैं तो आपको यह बात समझनी चाहिए कि यदि आप अपने पशु को अच्छा चारा व दाना पानी देते हैं तो उससे न केवल उसकी सेहत अच्छी रहती है बल्कि पशु की उत्पादक क्षमता भी कई गुना बढ़ जाती है। पशुपालन करते समय आप अपने पशु को सही मात्रा में पोषण वाला आहार ही खिलाएं, जिससे आपके पशु का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आपको मुनाफा भी अधिक प्राप्त होगा। अब दोस्तों बात आती है कि अपने पशु का आवास स्वच्छ रखें। अपने पशु का जो आवास है उसे साफ और स्वच्छ रखें। पशु का आवास जितना अधिक स्वच्छ होगा उतना ही आपके पशु को बीमारी का खतरा कम रहता है। पशुओं को नियमित रूप से नहलाएं और उनके आवास के लिए किसी ऊंची जगह का चयन करें, जिससे बारिश एवं नालियों का पानी, मलमूत्र इत्यादि से वह बाहर रह सके। आपके पशु के आवास में कम से कम 2 से 3 जगह से अच्छी धूप आनी चाहिए। आवास में धूप के आने से न केवल वहां के कीटाणु मरते हैं बल्कि आपके पशु का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। पशु के लिए पानी की सुविधा। पशु आवास में पशु के लिए पानी एवं खाने की उपलब्धता का भी ध्यान रखें। डेयरी के कामों में वैसे भी पानी की काफी जरूरत होती है और खास तौर पर गर्मी के मौसम में आपको पशु के लिए पानी उचित मात्रा में जरूर रखना चाहिए। पशु के स्वास्थ्य का अच्छे से ख्याल रखें। पशु पालन में अपने पशु के स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पशु पालन में सबसे जरूरी बात यह होती है कि आप अपने पशु को सही समय आने पर उसे सभी आवश्यक टीके लगवाएं, उसको लू लगने से बचाएं, चारा पर्याप्त मात्रा में दें ताकि उसका स्वास्थ्य ठीक बना रहे। पशु की नियमित रूप से डॉक्टरों से जांच कराते रहें। अगर आपका पशु कभी बीमार होता है या आपको वह कुछ सुस्त दिखाई देता है तो तुरंत उसे जानवरों के डॉक्टर को दिखाएं। ऐसा हो सकता है कि उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो। कभी भी जानवर के बीमार होने पर खुद उसका इलाज करने की कोशिश ना करें, यह आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। अपने पशु को अच्छा मुनाफा होने पर ही बेचें। अपने पशु को बेचने के लिए सही समय आने का इंतजार करें। अच्छी नस्ल वाले पशु को सही समय आने पर काफी अच्छे दामों में बेचा जा सकता है। जैसे कि अगर आप बकरी पालन करते हैं तो बकरी ईद के समय पर अपनी बकरी को अच्छे मुनाफे पर भी बेच सकते हैं। पशु उत्पादों में मिलावट ना करें। अगर आप बाजार में पशु का दूध बेचना चाहते हैं तो आपको काफी अच्छा मुनाफा हो सकता है, पर अगर आप अपने पशु उत्पाद में पानी या किसी और चीज की मिलावट करेंगे तो वह आपके व्यवसाय के लिए हानिकारक हो सकता है। पशु उत्पाद में मिलावट करने से आपका मुनाफा तो बढ़ जाता है, लेकिन मिलावट करने पर आपके ग्राहक आपके उत्पाद को नापसंद करने लगते हैं व आपके खिलाफ शिकायत भी हो सकती है। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। अगर आप सघन पशुपालन या आश पशुपालन करना चाहते हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य का भी उचित ध्यान रखना पड़ेगा, वरना आप जानवरों से होने वाले रोगों के शिकार बन सकते हैं। टीबी जैसे रोगों से एक उदाहरण है। जानवरों के मल में पैदा

होने वाले बैक्टीरिया और उनमें बैठने वाली मक्खियां आपको बहुत बीमार कर सकते हैं। पशुपालन की सरकारी सेवाओं का भी लाभ उठाएं। सरकार की तरफ से कृषि उद्धार के लिए किसान हेल्पलाइन जैसी कई सेवाएं शुरू की गई हैं। आप इन सेवाओं का लाभ अपनी भाषा में मुफ्त उठा सकते हैं। यह सुविधा 24 घंटा सातों दिन चालू रहती है। तो कभी अगर आपको पशुपालन से संबंधित कोई भी परेशानी होती है तो देर किए बिना किसान हेल्पलाइन पर आप कॉल कर सकते हैं। किसान हेल्पलाइन नंबर है 1551 या 1800। सो देखो दोस्तों, जो अपन ने पशुपालन से संबंधित जानकारी जानी है, अब एक क्रम में अपन एक गीत को सुनत और गीत को आनंद ले। सो आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दिन भैया के संग में। आओ दोस्तों, सुनत ही गीत को जिया गा रहे हैं राजकुमार त्यागी जी और अमूल अहरवाल।

बिल्कुल दोस्तों, जो 3 दिना को मिला री उड़जे है हंस अकेला। देखो कितना अच्छा जो गीत अपन सब जन ने सुनो, गीत को आनंद लो। ये गीत खुंगा रहती अमूल अहरवाल जी और राजकुमार त्यागी जी। अब दोस्तों आज के ये कार्यक्रम छिड़गियावाड़ा से आपके दोस्त मातदिन भैया को जाबे को समय हो गए है, सो हमें दो ये कार्यक्रम से जाबे की अनुमति। अपनी तपनी पर हुई मुलाकात ये कार्यक्रम में एक बेरा पे, जब तक के लाने नमस्कार।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप अपने रेडियो साथी माता दिन के संग में। और दोस्तों, हम लेके आ गए आप सब जनने के लाने जो कार्यक्रम विधा बुंदेली। और दोस्तों, कार्यक्रम विधा बुंदेली में अपने एक विधा को सुनते हैं और विधा को आनंद लेते हैं। सो दोस्तों, आज के अपने कार्यक्रम विधा बुंदेली में अपन सुने विधा श्रृंगार गीत को और श्रृंगार गीतन को आनंद ले हैं। दोस्तों, जो श्रृंगार गीत एक बहुत ही अच्छी विधा है जिमें नारी के श्रृंगार को वर्णन करो जात। सो दोस्तों, आप हम आप सब जन को सुनाओ थे जो श्रृंगार गीत कौन प्रकार से गाए जाते हैं। सो सबसे पहले गीत सुनाते हैं जी, ये गा रहे हैं राम कुमार प्रजापति जी। सो दोस्तों, आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दिन के संग में।
1: हाँ, तो आप एक श्रृंगार सुना रहे हैं। बुंदेलखंड में जब श्रृंगार करके नायिका निकले थे, देखने में मन ललचा के देखते ही रहे। और हम जब अपने घर से मतलब श्रीमती खन लुवा के आ रहे थे, जैसे लुवा के आए तो हमारे मित्र मिल गए और उनने पूछी कि तीन चार जने आ रही, उनमें से कौन है तुम्हारी धर्म पत्नी। हमने कही

बोले कि ऐसे में नहीं आ रही समझ में, बताओ तुम तो इस सच। हमने कहीं देखो श्रृंगार की बात है,

बोले के देखो, ऐसे में भी समझ में नहीं आ रहा हुआ, कर्दोनी दो जनी पे रहे। हमने की नहीं, जीने बना दही।

साड़ी वाली यहाँ? हमने की नहीं। बोले नीली साड़ी वाली? बोले नहीं। बोले फिर कौन? हमने की है। अरे कंजले ठाकुर दई हम ही खा, कंजले ठाकुर दई हम ही खा।

0: बिल्कुल दोस्तों, मटकत आ रही लटकत आ रही कमर में कर धोनी मोरी बेला कली। देखो दोस्तों कितनो प्यारो जो गीत अपन सब जन ने सुनो है, जो सिंगार गीत है, और दोस्तों ये गीत को गा रहे थे भैया राम कुमार प्रजापति जी। अब दोस्तों आ सुनते हैं अगले साथियों के गायब है सिंगार गीत को।
1: नई नई दुल्हन सज गई है न घुंघटा मैंने।

बिल्कुल दोस्तों, गोरे हैं गाल दुई होंठ लाल रेशम से वाल कारे कारे। देखो कितना प्यारा जो श्रृंगार गीत अपन सब जनों ने सुनो है, इस श्रृंगार गीत को आनंद लो है, ई गीत को गा रहे थे रामाधीन आर जी। सो दोस्तों, रामाधीन भैया जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो इनने तो अच्छो बढ़िया श्रृंगार गीत गा के अपन सब जन को सुनाओ है। अब एक क्रम में फिर से सुनते हैं अगले साथियों के गाय भाई श्रृंगार गीत को और लेते हैं उनके गीत को आनंद। सो दोस्तों, आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे, अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में।

लाली लाल श्रृंगार है, श्रृंगार बहुत से देखे हैं, सुने हैं आपने, जो तो लाल है केवल के लाल लाल चोली और चूनर है लाल, लाल लाल चोली और चूनर है लाल, लाल लाल साया पे, लाल लाल साया पे।

हर पावन हा हर पावन माहुर जो लगो लाल लाल हर पावन माहुर जो लगो लाल लाल और लाल लाल चुकटन में लाल लाल चुकटन में ककरा है लाल लाल लागो है।

लागो है नीको जो लाल बूंदा। देखो कितना प्यारो जो गीत अपन सब जन ने सुनो है, इस सिंगार गीत को आनंद लो है। इस सिंगार गीत को गा रहे थे भैया राम कुमार प्रजापति जी। अब दोस्तों राम कुमार भैया जी के गीत के बाद आप फिर से सुनते हैं अगले साथी के गायब है गीत को।

मन रहीने भोरा हे भौजी सदी मोर मोटर थी कर सोला सिंगार मन रहीने भोरा भौजी सदी

0: बिल्कुल दोस्तों, भौजी सजी मूर मोटर सी करसु लव सिंगार मनोरंजन रिभोरा। देखो कितना प्यारा जो गीत अपन सब जन ने सुनो है, इस सिंगार गीत को आनंद लो है। इस सिंगार गीत को गा रहे थे भैया राम सुमन अहिरवार जी। सो आओ दोस्तों फैशन सुनते हैं अगले साथियों के गाय भाई गीत को।
1: अरे जागोरी

फूल कंगनन में झूले गोरी के गालन में कंद फूल कानन में झूले गोरी के गालन खोचू में नेन कंजला ओठन लाली चाल समा के दान राली गली में तू है हार।

चमके पुणे जैसो चंदा चमके बूंदा लाल भाल पे दमके पुणे जैसो चंदा चमके हाथ

बिल्कुल दोस्तों, जागोरी बुंदेलखंड की अजब करे सिंगार, लगत देखत रहिए। तो देखो कितनो प्यारो जो सिंगार गीत अपन सब जन ने सुनो है, इस सिंगार गीत को आनंद लाओ है। दोस्तों ये गीत को गा रहे थे भैया खूबचंद कुशवाहा जी। आप दोस्तों खूबचंद कुशवाहा जी के गीत के बाद आप फिर से सुनते हैं अगले साथियों के गाय भाई गीत को और लेते उनके गीत को आनंद। सो आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में।

एक ही कजरवा कारो के गोरी धना जादू सो डारो। देखो कितना प्यारो जो सिंगार गीत अपन सब जन ने सुनो है, इको आनंद लो है। अब दोस्तों ये गीत के संगे संगे हम बता देवे कि ये गीत को गा रहे थे भैया राम सुमन अहरवार जी। अब दोस्तों ये कार्यक्रम से अपने दोस्त माता दीन भैया को अब जाबे को समय सो हो रहा है। सो दोस्तों अपने दोस्त माता दीन भैया को दो ये कार्यक्रम से जाबे की अनुमति अपनी तपनी फिर हुई है मुलाकात है कार्यक्रम में ये बेरा पे। अब अपने माता दीन भैया को दो जाबे की अनुमति। नमस्कार।

पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, पर हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5

0: लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयाँ।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था, वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है। तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
1: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

गलियों गलियों फिरता हूँ। कब से? जब से इस हसीना ने, जब से इस हसीना ने मुझको आंख मारी।

0: अगर ये देवी है तो हम भी पुजारी से कम नहीं है, और पुजारी हुए जब तो अगरबत्ती खोन से देवी के लगा प्रसन्न हुई है देवी काय और काय ना।
1: एक तरफ ये देवी है दूजा मैं पुजारी हूँ।

0: ना कि ये चांद तू इतना मत चमक, ये चांद तू इतना मत चमक, मैंने भी कई चांद देखे हैं और तुझ में तो दाग है लेकिन मैंने भी दाग देखे हैं।
1: लेकिन कहना है हसीनों का पीछा हम किया नहीं करते, हसीनों का पीछा हम किया नहीं करते, जज्बात की जिंदगी हम जिया नहीं करते, वो तो तुम हो जनाब, वो तो तुम हो कि तुम्हें मैंने अपना दिल दे दिया, वरना किसी को अपना दिल दिया नहीं करते।
0: तो कहना है आपसे मैडम कि हर शख्स यार नहीं होता, हर शख्स यार नहीं होता, हर दोस्त वफादार नहीं होता, ये तो दो दिलों के मिलने की बात है, वरना सात फेरों में भी प्यार नहीं होता।
1: लेकिन आजकल ऐसे होने लगो, बताए कैसे यारो मोहब्बत मत करना, यारो मोहब्बत मत करना, क्योंकि मोहब्बत में हर चीज पराई होती है। यारो मोहब्बत मत करना, प्यार से प्यार मत करो, जब तक प्यार तुमसे प्यार ना करे, और जब प्यार तुमसे प्यार करे तो जनाब तुम प्यार से इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि प्यार किसी और प्यार से प्यार ना करे।
0: जवाब सत्य कहना है हमने इतना प्यार करो मालूम कितना कल तक।

पूछना कि उसने भगवान हनुमान ने आई थी तो भगवान ने क्या उसके आंचल से जहर लगे थे जहर पिलाने के लिए कि मर जाए भगवान। तो क्या बोले।

0: मेरा नाम प्रमोद कुमार कुशवाहा है, सरपंच ग्राम पंचायत जखनगांव, जनपद पंचायत निवाड़ी। 15 अगस्त एवं रक्षाबंधन की मेरी ओर से बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं सभी लोगों से बोलना चाहूंगा कि अधिक से अधिक पर्यावरण के लिए पेड़ लगाएं और उनको संरक्षित करें।
1: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड सुनने वाले सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज हम चुरारा में उपस्थित हैं और यहाँ पर ग्राम पंचायत चुरारा के सरपंच हमारे साथ उपस्थित हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इस बार हम लोग पर्यावरण को बचाने के लिए क्या काम कर रहे हैं। सबसे पहले सर परिचय देते हुए शुभकामनाएं।
2: नमस्कार सभी ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को, और 15 अगस्त की एवं रक्षाबंधन की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं पर्यावरण के संबंध में सभी को यही चाहता हूं कि 15 अगस्त और रक्षाबंधन पर सभी लोग पर्यावरण पर विशेष ध्यान दें, साफ सफाई का, और सभी लोग अच्छे से रक्षाबंधन और 15 अगस्त मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। और सर इसमें एक चीज और जानना चाहेंगे कि इस बार आपने चूंकि अपनी पंचायत को लेकर क्या संकल्प किया पर्यावरण को बचाने के, खासतौर पर अभी घर घर तिरंगा चल रहा है, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे?
2: अभी शासन

0: के द्वारा घर घर तिरंगा चल रहा है, घर घर तिरंगा अभियान चल रहा है 9 तारीख से लेकर 17 तारीख तक। तो सभी को एक संकल्प के रूप में यही कहा गया है मेरी ओर से, मैं चाहता हूँ कि सभी लोग अपने हर घर तिरंगा लगाएं और साफ सफाई रखें। स्वच्छता एक अभियान है, जो इस प्रकार से अपने आसपास की भी साफ सफाई करें, यही हमारा सभी लोगों के लिए संदेश है।
1: मारो।

0: मेरा नाम प्रमोद कुमार कुशवाहा है, सरपंच ग्राम पंचायत जखनगांव, जनपद पंचायत निवाड़ी। 15 अगस्त एवं रक्षाबंधन की मेरी ओर से बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं सभी लोगों से बोलना चाहूंगा कि अधिक से अधिक पर्यावरण के लिए पेड़ लगाएं और उनको संरक्षित करें।
1: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड सुनने वाले सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज हम चुरारा में उपस्थित हैं और यहाँ पर ग्राम पंचायत चुरारा के सरपंच हमारे साथ उपस्थित हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इस बार हम लोग पर्यावरण को बचाने के लिए क्या काम कर रहे हैं। सबसे पहले सर परिचय देते हुए शुभकामनाएं।
2: नमस्कार सभी ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को, और 15 अगस्त की एवं रक्षाबंधन की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं पर्यावरण के संबंध में सभी को यही चाहता हूं कि 15 अगस्त और रक्षाबंधन पर सभी लोग पर्यावरण पर विशेष ध्यान दें, साफ सफाई का, और सभी लोग अच्छे से रक्षाबंधन और 15 अगस्त मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। और सर इसमें एक चीज और जानना चाहेंगे कि इस बार आपने चूंकि अपनी पंचायत को लेकर क्या संकल्प किया पर्यावरण को बचाने के, खासतौर पर अभी घर घर तिरंगा चल रहा है, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे?
2: अभी शासन के द्वारा घर घर तिरंगा चल रहा है, घर घर तिरंगा अभियान चल रहा है 9 तारीख से लेकर 17 तारीख तक। तो सभी को एक संकल्प के रूप में यही कहा गया है मेरी ओर से। मैं चाहता हूं कि सभी लोग अपने हर घर तिरंगा लगाएं और साफ सफाई रखें। स्वच्छता एक अभियान है, जो इस प्रकार से अपने आसपास की भी साफ सफाई करें, यही हमारा सभी लोगों के लिए संदेश है।

0: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड सुनने वाले सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज हम चुरारा में उपस्थित हैं और यहाँ पर ग्राम पंचायत चुरारा के सरपंच हमारे साथ उपस्थित हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इस बार हम लोग पर्यावरण को बचाने के लिए क्या काम कर रहे हैं। सबसे पहले सर परिचय देते हुए शुभकामनाएं।
1: नमस्कार सभी ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को और 15 अगस्त की एवं रक्षाबंधन की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं पर्यावरण के संबंध में सभी को यही चाहता हूं कि 15 अगस्त और रक्षाबंधन पर सभी लोग पर्यावरण पर विशेष ध्यान दें, साफ सफाई का, और सभी लोग अच्छे से रक्षाबंधन और 15 अगस्त मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। और

0: सर इसमें एक चीज और जानना चाहेंगे कि इस बार आपने चूंकि अपनी पंचायत को लेकर क्या संकल्प किया पर्यावरण को बचाने के, खास तौर पर अभी घर घर तिरंगा चल रहा है, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे?
1: अभी शासन के द्वारा घर घर तिरंगा चल रहा है, घर घर तिरंगा अभियान चल रहा है 9 तारीख से लेकर 17 तारीख तक, तो सभी को एक संकल्प के रूप में यही कहा गया है मेरी ओर से। मैं चाहता हूं कि सभी लोग अपने हर घर तिरंगा लगाएं और साफ सफाई रखें। स्वच्छता एक अभियान है, जो इस प्रकार से अपने आसपास की भी साफ सफाई करें, यही हमारा सभी लोगों के लिए संदेश है।
2: मेरा नाम प्रमोद कुमार कुशवाहा है, सरपंच ग्राम पंचायत जिखनगांव, जनपद पंचायत निवाड़ी। 15 अगस्त एवं रक्षाबंधन की मेरी ओर से बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं सभी लोगों से बोलना चाहूँगा कि अधिक से अधिक पर्यावरण के लिए पेड़ लगाएं और उनको संरक्षित करें।

बहुत दिनन से लगन लगी थी मिलवे सेल तुम्हारी, बहुत दिनन से लगन लगी थी मिलवे सेल तुम्हारी।

0: रहे तो फिर उसके बाद।
1: अरे अरे भाई, अहिंसा परमो धर्म है, हाथ मत उठो। हमें कानून के हद में रहना है, इंसानियत की सीमा पार नहीं करनी।
2: देश द्रोहियों की हम तमड़ी उधेड़ देंगे।
1: ये सब तुम मत बोलो तो फिर कौन बोलेगा?
3: वो बोलेगा।

अब करो भरोसा हर पे, अब करो भरोसा हर पे, करो भरोसा हर पे, ना करियो अपने घर

नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पर आ गई है आप सबके दोस्त वर्षा लेकर आपके लिए एक नया कार्यक्रम जिसका नाम है गली गली सिम सिम, जो है आपके लिए खास। जैसे आसमान का सितारा धरती पे उतारा, फिर उसने आकर खोला अपना जादू का पिटारा, जिसमें है ढेर सारी जानकारी और मस्ती। तो सुनते हैं लेकर चटकारा गली गली सिम।

0: यार बड़ी भूख लगी है, जरा देखूं तो आज क्या है किचन में। ये क्या, फिर से वही गोभी और वही आलू। भाई आलू गोभी खा के मेरे दांत भी थक गए हैं। कुछ नया भी तो होना चाहिए, रोज रोज कुछ नया नहीं खाऊंगा तो मुँह का स्वाद कैसे बदलेगा। अरे हाँ, खाने से याद आया, आज ना गली में एक नाटक होने जा रहा है जिसमें अपना गुगली बना है राजा और चमकी बनी है मंत्री। ओ जी, नाटक शुरू होने जा रहा है, जल्दी जल्दी सब अपनी जगह पर बैठ जाओ। आज महाराज गुगली के दरबार में एक नए मंत्री आए हैं।
1: महाराज गुगली की जय।
2: हमें भूख लगी है, हमारे नए मंत्री के स्वागत में पूरे दरबार को खास शाही पकवान परोसा जाए।
1: पेश है शाही पकवान।
2: मेरा मन पसंद शाही पकवान।
3: फिर वही शाही पकवान, रोज रोज शाही पकवान, बोर हुए हम खाते खाते रोज यही शाही पकवान।
4: कुछ करिए मंत्री चमकी।
5: क्या हर रोज यही पकवान बनता है? लगता है शाही रसोइये से बात करनी पड़ेगी। नमस्ते शाही रसोइये।
6: अरे मंत्री चमकी, आप
5: बताओ रसोइये, कल दरबार के लिए खाने में क्या बनाओगे?
6: शाही पकवान, और क्या, रोज वही बनाओ वही खाओ। मैं तो शाही पकवान से बोर हो गया हूँ, मुझे सपने आते हैं नई नई सब्जियों के, भिंडी के, गाजर के, रसीले लाल टमाटर के।
5: लेकिन तुम हर दिन कुछ नया क्यों नहीं बनाते?
6: मंत्री चमकी जी, हमारे महाराज गुगली रोज शाही पकवान ही खाते हैं और साथ में हमें भी खिलाते हैं।
5: अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा।
0: वैसे बात तो सही है, अगर कोई नया नया खाना ट्राई नहीं करेगा तो उसकी सेहत कैसे बनेगी। मुझे ही देख लो, लंबा चौड़ा तगड़ा हूँ, बिल्कुल सलमान की तरह। और फिर अगले दिन दरबार में
1: महाराज गुगली की जय।
2: हमें भूख लगी है, शाही पकवान लाओ।
6: ये लीजिए महाराज।
2: अरे वाह, आज तो हमारे शाही पकवान से कुछ ज्यादा ही अच्छी खुशबू आ रही है। लाओ मेरे पास लाओ शाही रसोइये।
6: जी महाराज।
2: ये मेरा शाही पकवान नहीं है, तुमने नया पकवान बनाया।
6: जी महाराज।
2: तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
5: गुस्सा मत कीजिए महाराज, आप टेस्ट तो करके देखिए।
1: महाराज ने चम्मच को उठाया,
7: पूरे दरबार में सन्नाटा छाया।
2: भाई वाह,
4: महाराज को नया पकवान पसंद आया।
2: मैं करता हूँ ये ऐलान, अब राज्य में रोज बनेंगे तरह तरह के पकवान।
1: महाराज गुगली की जय हो, मंत्री चमकी की जय हो।
0: ओए बल्ले बल्ले, गुगली महाराज खुश और राज्य के सब लोग भी खुश। रोज नया खाओ, पौष्टिक खाओ और अपनी सेहत बनाओ। सब लोग इतने खुश थे कि उन्होंने तो गाना ही सुना दिया।

0: मजा आ गया। अब सब बच्चों की मम्मी और डैडी को मैं एक राज की बात बताता हूँ। अगर कभी आपके चुन्नू मुन्नू बोलू मोलू नई नई चीजें खाने से मना कर दे तो मैं आपको एक तरकीब बताऊं। कोई बात नहीं, थैंक यू, बाद में बोल लेना। तो सुनिए, आप सब अपने बच्चों के साथ मिलकर खाना बनाएं और फिर देखिए कि उन्हें अलग अलग चीजें खिलाना आसान हो जाएगा। जैसे कि मेरी दोस्त पल्लवी और उसकी मम्मी मिलकर कुछ बना रहे हैं।
1: सब्जियों और फलों में मुझे सबसे ज्यादा पसंद है आम। आम फलों का राजा है। मेरा नाम पल्लवी। सबसे अच्छे आम गर्मियों में ही मिलते हैं। आम किसी भी तरह खाया जा सकता है। और आज मैं, मम्मी और शिरीन मिलकर स्वादिष्ट भेलपूरी बनाएंगे। ये बनेगी खट्टी मीठी अम्बी से, मतलब कच्चा आम। गर्मी में ये चटपटी भेलपूरी कितनी ताजगी भरी होती है। अब हम भेलपूरी में कुछ सब्जियां और मसाले डालेंगे। तीखा प्याज, लाल लाल टमाटर, मिर्च। बड़ा मजा आ रहा है। भेलपूरी में हम मुरमुरे जरूर डालते हैं और फिर मिला देते हैं सभी सामान। बन गई चटपटी भेलपूरी। अब आएगा मजा। हम सब साथ मिलकर खाएंगे चटपटी भेलपूरी।
0: देखा कितने बढ़िया तरीके से पल्लवी और उसकी मम्मी ने साथ में भेलपूरी बनाई। वाह, अब मैं तैयार हूँ चमकी और गुगली के साथ एक गेम खेलने के लिए। चलो चलकर देखते हैं ये दोनों क्या खेल रहे हैं।
2: गुगली, मैं तुमसे एक पहेली पूछूंगी और एक आवाज भी सुनाऊंगी। तुम्हें आवाज सुनकर उस खाने की चीज का नाम बताना है। तो तैयार?
3: तैयार।
2: तो सुनो पहेली। उगती है जमीन के नीचे लंबी पतली सब्जी लाल, इसको अगर दांत से काटो तो आती है ये आवाज। बताओ गुगली, मैं कौन सी सब्जी के बारे में बात कर रही हूँ?
3: उगती है जमीन के नीचे लंबी पतली सब्जी लाल।
2: हाँ, एक बार फिर से आवाज सुन लो।
3: लाल सब्जी जिसको खाने से ऐसी करारी आवाज आती है। समझ गया, ये है गाजर।
2: बिल्कुल सही, गाजर, जिसको इंग्लिश में कैरेट भी कहते हैं। गुगली गुगली, ये तो बहुत मजेदार गेम है। चलो अब हम ये गेम अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं। क्यों, खेलोगे ना तुम मेरे साथ? हुँ?
3: तो हो जाओ तैयार। चलो चमकी, पहला सवाल तुम पूछो।
2: ठीक है, सुनो दोस्तों। रंग में मैं सफेद हूँ, पीने की चीज हूँ, रोज पिया मुझे तो बनोगे तंदुरुस्त और बलवान। आवाज सुनो और बताओ क्या है मेरा नाम।
3: रुको रुको, सोचने दो। रंग में मैं सफेद हूँ, पीने की चीज हूँ, रोज पिया मुझे तो बनोगे तंदुरुस्त और बलवान।
2: हाँ,

0: समझ चमकी, मैं बताऊं।
1: अरे गुगी अभी रुको, बाकी सबको सोचने का मौका दे दो।
2: क्यों दोस्तों, क्या तुम्हें पता चला?
1: एक बार फिर से सुनोगे आवाज?
0: चमकी अब तो जवाब बताने दो।
2: अच्छा अच्छा बताओ, क्या है जवाब?
0: दूध, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं मिल्क।
2: एकदम सही, क्या तुमने भी दूध कहा? बहुत बढ़िया,
0: मजा आया ना? अब यार ये बताओ, इसको छिलो तो कोई आवाज नहीं आती, इसको खाओ तो भी कोई आवाज नहीं आती, पर इसके छिलके पे जब कोई फिसलता है तो बड़ी जोर की आवाज आती है। जी क्या बोला? केला यानी बनाना। ओए सही जवाब। ओ यार आज खाने के बारे में कितना कुछ सीखा हम सब ने। हर तरह का खाना खाओ और सेहत बनाओ। अब वक्त है मिलने का हमारी प्यारी नटखट चुलबुली चमकी से। सुनते हैं कि आज चमकी कौन सी मजेदार बातें कर रही है अपने दोस्तों से।
2: कल हमारी गली में पिकनिक थी, सब लोग अपने घर से अलग अलग चीजें बना के लाए थे। पता है बुम्बा ने बोला ये सब पौष्टिक खाना है, मगर सब इतनी ढेर सारी सब्जियां क्यों खाते हैं? मैं बात में पूछती हूँ। हाय मेरा नाम है चमकी और आप?
3: अब्दुल रहमान।
2: अब्दुल रहमान जी, पौष्टिक खाना क्या होता है?
3: जैसा कि नाम से ही मालूम है कि पौष्टिक खाना बच्चों को देने से उनकी हड्डियों में मजबूती पैदा होती है, उनका दिमाग बहुत अच्छी तरह काम करता है, उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाता है, उनका पढ़ाई में रुचि होती है, खेलने में भी रुचि होती है। पौष्टिक खाना जीवन में तरक्की करने के लिए निहायत जरूरी है।
2: और आपके गांव में कौन कौन सी पौष्टिक सब्जियां होती हैं?
3: पालक है, टिंडा है और बहुत सारी सब्जियां जैसे लौकी है।
2: मुझे भी पौष्टिक खाना खाना चाहिए ताकि मैं और स्ट्रांग बन जाऊं। मगर मुझे ना कुछ कुछ हरी सब्जियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्या करूं? हाँ गुड़गांव में अपनी दोस्त से पूछती हूँ।
4: मेरा नाम शांति है।
2: शांति, सुमित और उसकी भाई बहनों को कौन सी सब्जियां अच्छी नहीं लगती?
4: वो तो बस आलू की ही सब्जी पसंद करती है और कुछ भी नहीं खाना चाहती है।
2: हाँ सिर्फ आलू? हाँ फिर शांति तुम उन्हें कैसे खिलाती हो?
4: उन्हें कहती हूँ कि बेटे खा लो, थोड़ा भी खाना चाहिए, ताकत की चीज है हरी सब्जी खाने से, मगर खाती नहीं है उन लोग।
2: अरे मेरे गुड़गांव के दोस्त तो कोई भी सब्जी नहीं खाते। बुंदेलखंड में पूछती हूँ। हाय आपका नाम क्या है?
5: हमारा नाम है लक्ष्मी बाई।
2: आप अपने घर पे कौन कौन से पौष्टिक खाना बनाते हो?
5: दाल बनती, चावल बनते, पालक की भाजी बनती, मूली का साग बनता, सरसों का साग बनता, मेथी का बनता, चनों का भी बनता, सब बना के ये बच्चों को देते हैं।
2: अरे वाह, बुंदेलखंड में मेरे दोस्त तो सारी पौष्टिक सब्जियां खाते हैं। एक और दोस्त से भी पूछती हूँ। हाय वैष्णवी, ऐसी कौन सी सब्जी है जो तुम्हें अच्छी नहीं लगती?
6: पालक।
2: ओह फिर तुम पालक कैसे खाती हो?
6: जब मम्मी अपने हाथ से खिलाती है।
2: हाँ मुझे भी तो बहुत अच्छा लगता है। शारदा आप वैष्णवी को पालक और पौष्टिक सब्जियां कैसे खिलाती है?
7: मैं वैष्णवी को पालक कहानियां सुना के खिलाती हूँ।
2: ये अच्छा तरीका है, मैं भी कहानी सुनकर सारी सब्जियां खाऊंगी। मुझे तो भूख लग रही है। चलो सुने कि पौष्टिक सब्जियों को और स्वादिष्ट कैसे बना सकते हैं?
5: मैं करेला बनाती हूँ तो उसको छील के और अपने कढ़ाई में रख देती हूँ। तेल डालूं 2 चम्मच, फ्राई करी लाल हो गए मैं उनको निकाल के रख देती हूँ। फिर 1 चम्मच दालचीनी, जीरा का को गरम मसाला और अजवाइन है, मेथी है, सब हम लोग पीस के उसको मसाला अच्छा बना के उसको फ्राई करके बच्चों को फिर खिलाते हैं।
2: अब मैं सब कुछ खाऊंगी, तुम भी सब सब्जियां खाना, ठीक है दोस्तों? ओके बाय
0: बाय। मजा आया ना?

0: तो दोस्तों मजा आया ना आज का हमारा जो एपिसोड था यानी के गुगली महाराजा। वही बात, क्या बात है, गुगली महाराजा की तो बात ही अलग है। और फिर हमारे कार्यक्रम में जो कितनी अच्छी अच्छी बातें करी गई हैं, भाई हरी सब्जी क्या होती है, हरी सब्जी हरी सब्जी, मुझे तो उसका कलर ही बहुत अच्छा लगता है। आपको पता है कि हरी सब्जी का जो रंग होता है यानी कि ग्रीन, और ग्रीन रंग तो सभी को पसंद होता है जैसे, तो इस पर पेड़े भी कितने हरे हरे हैं तो वो हमें कितने सुंदर लगते हैं, और जब पेड़े सुंदर लगते हैं तो उसी तरह सब्जियां भी सुंदर लगती हैं, और जब सुंदर सुंदर चीजें हम खाएंगे तो हम सुंदर सुंदर बन जाएंगे। अब इस बात पर हमारे साथ में मौजूद है पजनपुरा की गीता जी, तो आइए वो क्या कहती है इस बारे में।
1: नमस्कार, मेरा नाम वर्षा है, आपका नाम क्या है?
2: नमस्कार, मेरा नाम गीता है
1: जी। तो गीता जी, जैसे कि अभी देख रहे हैं कि हरी सब्जियों के बारे में बहुत झगड़ा होता है कि बच्चे हरी सब्जियां नहीं खाते हैं, तो क्या कारण हो सकता है कि बच्चे हरी सब्जियां क्यों नहीं खाते हैं?
2: उनका कारण एक ही है कि वो हरी सब्जी पसंद नहीं करते, इसीलिए उनको अलग तरीके से हम खिला सकते हैं बच्चों, क्योंकि हरी सब्जी यहाँ तक कि बड़े भी नहीं खाते।
1: हाँ हाँ जी, तो इनका मतलब हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि कोई ऐसा उपाय है जिस तरीके से हम उनको हरी सब्जियां खिला सकते हैं?
2: हाँ, ऐसा दूसरा तरीका भी है, जैसे कि हम हरी सब्जी है जैसे लौकी है तो उसका हम कोफ्ता बना दें तो बच्चे पसंद कर लेंगे खाने के लिए, और दूसरी तरह जैसे पालक है तो पालक भी नहीं खाते तो उनको मतलब पालक पनीर जैसा पनीर मिला के बनाए तो वो पसंद कर लेंगे, कि आलू में बनाए तो पसंद कर लेंगे। ज्यादातर बच्चे आलू ही पसंद करते हैं, इसलिए आलू में हम मिक्स करके बना सकते हैं, या पालक पनीर ही बनती है ना तो वो वैसा ही बना सकते हैं तो बच्चे पसंद कर लेते हैं।
1: अच्छा, और क्या क्या वजह है जिनसे बच्चे नहीं खाते हैं, मतलब बच्चों को खाने में अक्सर क्या पसंद होता है?
2: बच्चों को खाने में अक्सर पसंद होता है कि उनको चटपटी सब्जी मिले, और हरी सब्जी तो वो बिल्कुल पसंद ही नहीं करते, जैसे कि आलू हुए, छोले हुए, और दाल, मतलब ये दाल चावल तो वो खाते ही हैं, और बल्कि हरी सब्जी बहुत ही कम खाते, इसलिए हमें अलग तरीके से उनको बना के हरी सब्जी, क्योंकि पौष्टिक होती है तो उनको आहार मिलना चाहिए, तो इसलिए हमें दूसरे तरीके से बना के उनको खिलाना चाहिए।
1: जी, आपने बताया जैसे कि हरी सब्जी पौष्टिक होती है तो किस तरह से हमारे शरीर को फायदा करती है, इसके बारे में थोड़ा बताएं।
2: हमारे शरीर को जो हरी सब्जियों से विटामिन मिलती है तो फायदा ही तो होता है कि हरी सब्जियां ना खाएं, तो कि अगर हम बच्चों को खिलाएं ना तो मतलब पौष्टिक के आहार कम ही हो सकती है, जैसे कि बड़े हों या छोटे बच्चे हों, तो हमें ज्यादा जरूरी है कि उनको हरी सब्जी खिलाना चाहिए क्योंकि उनको आहार मिले, पौष्टिक आहार मिले, और इसके अलावा की तो मतलब हमें नुकसान भी बता सकते हैं, इसलिए हमें हरी सब्जियां देख के खानी चाहिए।
1: धन्यवाद
2: धन्यवाद।

नात आई घर की हुलिया बदल गई। जिद नात आई घर की हुलिया बदल गई। लड़का और बिटियन का ऐसी अकल।

0: ही कार्यक्रम के माध्यम से जो है उन्हें उस जगह को घुमा देवे। एक कथा है ना कि अपन सुन के भी, सुन के और आंखें बंद करके अपन समझत के उस जगह पे पहुंच गए, और विस्तार से अगर कोई बता रहा हो के बारे में तो है कि नहीं। सो अपन ई कार्यक्रम से आज आपको ले चलते हैंगे चंदेरी। जी हाँ साथियों, आपने चंदेरी की साड़ियां तो बहुत सुनी हुई है, लेकिन चंदेरी को ऐतिहासिक का रहस्य है गो, उके बारे में भी अपन और ई कार्यक्रम के माध्यम से जाना थेंगे। तो आप देर नहीं करे थेंगे, हम आपको ले चले थे सीधे चंदेरी। काहे के पहुंचे में इतना टाइम भी लगे होते, ठीक है? तो चलो अपन सैर कर भी चले थेंगे और संस्कृति के बारे में जाना थेंगे चंदेरी की, और जी के बारे में विशेष पूरी जानकारी दे रहेंगे अपने रेडियो साथी जगरूप जी।
1: वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार, धरती माँ की यही पुकार।

भारत माता को हृदय है, हाँ भारत माता को हृदय है, ई पे हमें घमंड अपनो प्यारो बुंदेलखंड। भारत माता को हृदय है।

सुबह और मिलके धसान, जिनको पानी सुधा समान, पर्वत जंगल आलीशान।

कौशल्या की पदवी पाई, गोदी खेलत रहे रघुराई। रानी सुवर गले की पाई, कौशल्या की पदवी पाई, गोदी खेलत रहे रघुराई। प्रेम भाव के भूखे भगवन, प्रेम भाव के उनके भगवन, वीरन तज पाखन अपनो प्यार हो बुंदेलखन। प्रेम भाव के उनके भगवन, वीरन तज पाखन अपनो प्यार हो बुंदेलखन। भारत माता को हृदय दो है, जीपे हमें

0: पेड़ पौधों से करोगे प्यार तो रहेगा जीवन खुशहाल। वृक्षों को कटने से बचाओ, वृक्ष ही जीवन है। वृक्ष लगाइए, जीवन बचाओ।
1: वीर सिंह यादव के स्वर में अभी हमने ये लोक गीत सुना, अपनो प्यारो बुंदेलखंड, भारत माता को हृदय है। बिल्कुल मित्रों, ये गीत भी बिल्कुल बयां करता है हमारे इस बुंदेलखंड को। हमारा बुंदेलखंड, हमारा ये जो प्रदेश है, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, तो हमारे भारत देश का एक मध्य स्थल है, हृदय क्षेत्र है। तो अब हम आगे बढ़ें और चलते हैं हृदय स्थली की एक ऐसी जगह पर जहां बहुत ही लोक लुभावन संस्कृति से परिपूर्ण और प्राकृतिक सौंदर्य निहारते ही बनता है। हम बात कर रहे हैं वही चंदेरी की, तो चलते हैं चंदेरी। श्रोताओ, आज हम आपको ले चलते हैं अपने बुंदेलखंड की, हालांकि ऐतिहासिक जो जानकारी आप सभी को हम अब तक पहुंचाते रहे हैं। आज प्रातः काल का वक्त है और चंदेरी जो कि ऐतिहासिक नगरी है, अपने आप में एक रमणीक जगह है जो कि देखने लायक ही है। और आज हम बस्ती से जब आए यहाँ, जागेश्वरी देवी माँ का प्रसिद्ध मंदिर है जो कि पहाड़ पर बना हुआ है, और यहाँ पहाड़ से हम देख रहे हैं, सीढ़ियां चढ़ते हुए आ गए हैं ऊपर, जो यहाँ की नगरी को देख रहे हैं तो देखते ही बन रही है। और हम चलते हैं जागेश्वरी मंदिर, माता रानी के दरबार में। हमारे साथी भी हैं मोहन वर्मा जी, जो कि हमारे साथ ओरछा से ही आए हैं अपनी गाड़ी से। हम अंदर प्रवेश करते हैं मंदिर में, और अब हम मंदिर प्रांगण में आ गए हैं, तो सामने ठीक खड़े हैं जहां पर शिव जी का स्थान बना हुआ है प्राचीन, और हनुमान जी महाराज की भी प्रतिमा है बगल में। देखते हैं कि यहाँ पर प्रभा देवी और काफी जो चरण सेवक हैं उन्होंने कुछ व्यवस्थाएं कर रखी हैं। काफी बड़ा जो आयताकार जगह में ये स्थापित मंदिर, जगह जगह पहाड़ों को तराश करके कुछ मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं। और श्रोताओं, हम आपको बता दें कि माँ जागेश्वरी देवी के मंदिर में हैं हम, जो पुजारी हैं उनसे हम थोड़ी सी जानकारी करते हैं, माता रानी के चर्चा करते हैं माता रानी जी के विषय में। आप अपने बारे में बताएं, आपका शुभ नाम।
2: हमारा नाम मनोज कुमार चौबे है, उपनाम जुग्गे महाराज है। यहाँ हमारे पूर्वज सन 1631 से हैं, और वहाँ पूर्वजों द्वारा जो ज्ञात है, यहाँ पे उस समय झांसी स्टेट रहा है यहाँ का, झांसी स्टेट था फिर ग्वालियर हुआ। यहाँ ये विंध्य मेखलाओं के बीच माँ जागेश्वरी माँ विराजी हुई हैं, जो हिंदुस्तान के 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। यह शक्तिपीठ हिंदुस्तान के जो 52 शक्तिपीठ हैं, माँ सती के अंग हैं, 52 अंग जो भगवान शिव की भार्या के इस मृत्यु लोक में अवतरित हुए हैं, उनमें से यहाँ माँ का मुख है। उसके साथ एक किंवदंती जुड़ी हुई है। उस किंवदंती में बताया जाता है कि राजा कुरुम देव हुए हैं, कुरुम शासक, और उनके समय में यहाँ प्राकट रूप है। उसकी खोज बंसीधर चौबे नाम के पंडा जी हुआ करते थे, जिन्होंने की, फिर उनको ये तीर्थ दान स्वरूप दे दिया गया था। इसके बाद यहाँ पर जो शिवलिंग है, 2251 शिवलिंगों के साथ शिव शक्ति का संगम केंद्र है, वाणी से प्रमाणित नहीं होगा। यहाँ एक प्रतिमा है भगवान शिव की और पार्वती की, जो बाहें हाथ में डाले हुए हैं एक दूसरे के, तो ये शिव शक्ति का संगम केंद्र वह प्रतिमा प्रमाणित करती है। यहाँ 7 झरने हैं, 7 झरनों का स्वाद भिन्न है। इस तीर्थ में आए हुए श्रद्धालुओं के लिए संतान प्राप्ति का अद्वितीय केंद्र है। माँ कन्या के रूप में दर्शन दिए हैं राजा को, और राजा को स्वप्न में प्रकाशित किया था कि माँ जागेश्वरी मैं प्रकट होना चाहती हूँ, मंदिर का निर्माण करवा, मंदिर का निर्माण करवा की पूर्वाभिमुख, और उसके पट 9 दिन तक नहीं खोलना है। राजा अविश्वासी हुआ करते हैं, उनके चाटुकार इतने हुआ करते हैं कि विश्वास करना सहज नहीं होता है, क्योंकि कौन सत्य बोल रहा है कौन असत्य बोल रहा है। तो राजा ने मंदिर का निर्माण तो करवाया, लेकिन पट नौ दिन की बजाय तीन दिन में खोल दिए, तो माँ का मुख निकला हुआ है।
1: अच्छा,
2: माँ के मुख के ही दर्शन होते हैं, और ये संतान प्राप्ति का अद्वितीय केंद्र है। यहाँ के झरनों के जल का पीछे जो कुंड बना हुआ है बताते हैं कि ये रोगों को दूर करता है। यहाँ आने पर स्वयं प्रमाणित होता है कि ये भौगोलिक परिस्थिति से तपस्थली रही है, और ये तपस्थली स्वतः प्रमाणित करती है। जब जीवधारी यहाँ कोई भी आता है तो उसे यहाँ आने पर अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। और इस तीर्थ में शिव शक्ति के संगम केंद्र पर यहाँ भगवान शिव की विशेष आराधना की जाती है। श्रावण मास में 22 से 51 शिवलिंगों का एक साथ अभिषेक किया जाता है, और माँ का भी अभिषेक होता है। नवरात्रि में यहाँ पर काफी रस रहता है। कुमार की नवरात्र में यहाँ मेला नहीं भरता, लेकिन चैत्र की नवरात्रि में यहाँ मेला भरता है, और दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, चुनरी लाते हैं। जैसे लोगों की कावड़ यात्रा होती है, यहाँ पर चुनरी यात्रा होती है। जगह जगह से लोग चुनरी लाते हैं, अपनी आस्था को यहाँ माँ के पास प्रकट करते हैं। माँ के प्राकृतिक नेत्र हैं। जीवधारी जब सामने खड़ा होता है तो माँ स्वयं देखती हैं। यहाँ सामने खड़ा है, तन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, और जन्म कोटि अघनासे हु तबहि। 11 वर्ष से यहाँ रामायण चला रहा हूँ, जो निरंतर गति में है। और ये तपस्थली, भजन स्थली, तंत्र स्थली

0: स्थली और शक्तिपीठ है। इतने प्रकरणों के समाहित है ये। यहाँ पर दत्तात्रेय की प्रतिमा है, जहाँ अनुसुईया जी ने कमंडल से जल छिड़क करके उनकी सतीत्व को नष्ट करने के लिए जब तीनों देवताओं को भेजा गया था ब्रह्मा विष्णु महेश को, तब उनको बाल स्वरूप बना दिया गया था। बाल स्वरूप प्रतिमा भी यहाँ है और यहाँ पर 2251 शिवलिंगों के साथ दत्तक गणेश भी हैं, दक्षिणावर्ती गणेश। यहाँ जितने गणपति हैं वो सब दक्षिणावर्ती हैं और यहाँ भक्तों श्रद्धालुओं के लिए अद्वितीय शांति प्राप्त की जाती है। यहाँ पर भिखारी नहीं है, कोई भी भिखारी यहाँ नहीं मिलेगा। और यहाँ पर शुरू से ये नियम है कि अंदर जो पुजारी भी अटते हैं, जो अन्य तीर्थों में कल्चर है कि भक्त आया नहीं कि पुजारी अटे, यहाँ पर इस तरीके का कोई स्वरूप नहीं है। यहाँ आने के बाद भक्त स्वतंत्र है, वो अपनी आराधना अपने हिसाब से कर सकता है, उसको कोई ना भिखारी छेड़ेगा ना पुजारी छेड़ेगा। यह विशेष पवित्रता इस तीर्थ की हमेशा से है और रहेगी।
1: आप और जो भक्त आते हैं, पर्यटक आते हैं, तो उनसे आप क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं उनको यहाँ के स्थल के बारे में, कि जैसे देखते हैं कि कभी क्षतिग्रस्त भी कर देते हैं या साफ सफाई को लेके उदासीन रहते हैं कई लोग, तो उनको किस तरह से आप कुछ कहना चाहेंगे?
0: यहाँ आने वाले भक्तों श्रद्धालुओं को समझाते हैं और साफ सफाई यहाँ हम स्वयं करते हैं, पोताई स्वयं करते हैं, रखरखाव स्वयं रखते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई सहयोग प्रशासनिक या नेताओं से नहीं है। और यहाँ पर 11 वर्ष से रामायण चल रही थी, उस रामायण को यहाँ के नेताओं ने और कर्मचारियों ने मिलकर के छेड़ा था, पंडा परिवार को भी सताया गया और यहाँ पर विकास तो नहीं किया गया, अभी तो सताया जरूर गया है। व्यवस्थाओं को कभी बनाने की किसी नेता ने या कर्मचारियों ने कभी कोई कोशिश नहीं की है।
1: आप हमसे जुड़े और
0: पर्यटक आते हैं, पर्यटकों के लिए कोई शिकायत नहीं रहती, पर्यटकों का लगा भव्य स्वागत किया जाता है। बाहर से विदेशी जो पधारते हैं उनको विशेष तरीके से स्वागत किया जाता है और उनको आदर सम्मान दिया जाता है। जो भी बाहर से पर्यटक आते हैं वे यहाँ प्रफुल्लता से बाहर जाने के बाद यहाँ की तारीफ करते हैं।
1: जो हमारे देश की, हमारे भारत माता की शान और एक आदर्श है कि अतिथि देवो भव, तो उसका आप साकार करते हैं।
0: यहाँ अतिथि देवो भव को साकार करना हमारा कर्तव्य और दायित्व बनता है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप जुड़े और अपनी बातचीत की हमारे साथियों के लिए। आपको पुनः नमस्कार, धन्यवाद। और मित्रों, यहाँ पे काफी दर्शनार्थी भी हैं, तो हम उनसे बात करते हैं। आप अपने बारे में, आपका शुभ नाम क्या है दादाजी?
2: हमारा नाम रामेश्वर प्रसाद याग्निक, रिटायर्ड शिक्षक। हमने 40 साल मास्टरी करी, 20 साल मिडिल स्कूल, 20 साल हायर सेकेंडरी स्कूल, 1 साल जावरा रहे।
1: तो आप उन्हें यहीं के हो?
2: यहीं के।
1: अच्छा, तब तो आपन कैसो महसूस करते यहाँ जन्म लेके हैं ऐसी अच्छी तपोस्थली में, क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ के बारे में?
2: हम जो है देवी जी की बहुत अनुकंपा है हम पे। हम बचपन से आ रहे हैं, 5 वर्ष की आयु से आ रहे हैं, देवी जी की उनकी कृपा से हमारा सब भंडार भरपूर है और हम जो है उन्हीं के आशीर्वाद से फल फूल रहे हैं। हमें किसी का ना देना है ना लेना है, बस माँ का दर्शन हो जाते हैं, दिन भर चैन से घटता है।
1: आप शिक्षक हैं और हमारे जो युवा साथी हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं?
2: बस सब खूब धर्म के प्रति आस्था बनाए रखें, धर्म में आस्था बनाए रखें। और हमारे पंडा जी ने अखंड रामायण चल रही है, राम भद्राचार्य जी महाराज ने चालू करी है। यहाँ पंडा जी को बहुत मेहनत करते हैं, सबको खाना खिला रहे हैं, सबको चाय पानी ना सबको।
1: रामचंद्र जी का मंदिर है।
2: हाँ, वो अच्छा। खंगारों का है। हाँ। और वो जो है किराए पे, मतलब ऊपर 2 मंजिल है, नीचे बहुत बढ़िया मंदिर है, हनुमान जी की मूर्ति है, बहुत सुंदर मूर्तियां उसमें रामचंद्र बोल रहे हैं, हम देखे हैं। और बहुत बड़ा है मंदिर।
1: अच्छा।
2: उसको उसकी व्यवस्था जो है पता नहीं कौन कर रहा है, लेकिन ये है कि बहुत अच्छी जगह है।
1: अच्छा है।
2: हाँ, बहुत बढ़िया है।
1: तो साथियों, अभी हमने चंदेरी में जागेश्वरी मंदिर की ये विशेषता और वहाँ की बातचीत सुनी जुग्गे महाराज से, और अब वक्त हो चला है एक और गीत का। सुनते हैं एक और लोक गीत धन कुंवर की आवाज में।

साथियों, अभी हमने धन कुंवर के स्वर में ये बुंदेलखंड पर आधारित लोकगीत भी सुन लिया और अब वक्त हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से आप सभी से विदा लेने का। और मित्रों, विदा तो लेना ही है, आपकी अब वारी है, नंबर है आपका कि आप हमें फोन लगाकर बताएं कि ये जो कार्यक्रम है, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, आप सभी को कैसा लगता है कार्यक्रम। मित्रों, अगर आपकी चिट्ठी या फोन आ जाते हैं तो हमें बहुत ही खुशी मिलती है कि चलिए हम जो कार्यक्रम आप तक पहुंचा रहे हैं वो आपको बेहद पसंद भी आ रहा है। तो आप हमें अपनी प्रतिक्रिया, अपने सुझाव, फीडबैक जरूर देते रहें हमारे इस कार्यक्रम को और बेहतर बनाने के लिए। और हाँ, हम आपको बता दें, अगर आपकी जानकारी में अपने इस क्षेत्र में, अपने बुंदेलखंड में ऐतिहासिक, आपके गांव की कोई विशेषता है, आपके गांव में कोई ऐतिहासिक मंदिर या ऐतिहासिक किला या मठ, जो भी इतिहास से जुड़ा हुआ है, आप जरूर हमें बताएं। 9425-14-17-26 पर अपने सुझाव दे सकते हैं। नंबर पुनः सुने, 9-4-2-5-1-4-1-7-2-6। हम आपके फोन का या पत्र का इंतजार करेंगे। मित्रों, हम आपको बता दें कि आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं हमारे इसी नंबर पर और लिख सकते हैं अपने गांव का नाम, अपना नाम और कार्यक्रम के बारे में कि आपको कैसा लगा। तो बस अब अपने रेडियो साथी जगरूप को दें जाने की इजाजत। अगले कार्यक्रम में फिर होगी ऐसे ही मुलाकात। तब तक के लिए स्वीकार करें नमस्कार, खुश रहिए, मस्त रहिए।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं इस वक्त अपने दोस्त माता दीन के संग में। और दोस्तों हम लेके आ गए कार्यक्रम बुंदेली किस्सा। तो आओ दोस्तों सुनते हैं कहानी को, लेते हैं कहानी को आनंद। तो साथियों आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने दोस्त माता दीन के संग में।
1: कोते राजन के कुंवर आओ और एक हती बानिया के लड़का।
2: अच्छा मतलब एक हती राजा के कुंवर,
1: एक हती बानिया के।
2: आज दो जने हो गए,
1: दो जने हो गए।
2: हाँ
1: अच्छी चास है उनकी दोस्ती।
2: हाँ
1: उनकी दोस्ती रहे सो अपने काम कहा तो के पढ़ लिख के जो भी याद है सुबह को चले जावे।
2: दो ही के दो,
1: दो ही के दो शिकार भी अपने घोरो मस्के भी अपने घोरो मस्के।
2: हाँ
1: अब जब वन में पहुंच गए
2: हाँ
1: तो जा शिकार खेली, बा शिकार खेली, खेल खाल के अपने घर पहुंच गए। अब कल को दिन बर्ती तुमने फिर करना।
2: अच्छा
1: तो कल के दिन में भी बोले कल बीरन बोले अब बीरन ने कही कि हम तो भाई ससुराल जा रहे।
2: अच्छा
1: अब राजन को नहीं है तो पतो के हमारे ससुराल देखे थे। अब राजन को बस बीरन थे अपने बानिया कितना शिकत बीरन।
2: अच्छा
1: हो अब भी है बादशाह बीरन और बादशाह दोनों जने कह के राजा हो बस।
2: हाँ
1: बीरन ने जी सुबह

0: માર બનવાય, દાઢી ફાડી બનવાય, બાર છટવાય, એટલે કવૈયા કાંકીડાની છટવાય, એટલે સસરાલે જાય.
1: અચ્છા,
0: अब जब नाव घेगो से नाव खो रख तो गांव भर को के फलाने के ब्याह है, फलाने के लगन है, फलाने के सतकरा है, फलाने के पक्या थे,
1: जा सही की
0: नाव खो सब पतो है. नाव खो तो राजन की कुमारी की ससुराल को पतो
1: ऐसा.
0: अब बीरन के बार बन गए, अब राजन के बादशाह के बनने, बादशाह के बार बने. बादशाह बोले बोले कर ले कब निकल ले कही राजन के राजा बोली कर ले बीरन तो जा रहा ससुराल है, हमारा हम कैसे चले जावे. अरे बोली कर ले राजन के राजा, आप कैसे ससुराल तो पृथ्वी पे काउगी है ही नहीं ना.
1: अच्छा
0: हाँ हाँ, तो बस बोली कर ले अच्छी सब भी तीन जने हो गए.
1: अच्छा
0: के नाव होगा बादशाह होगा बीरन हो गए, अब तीन जने की दोस्ती हो गई. बस चलिए ससुराल के लाने. तो उनके राजन के कुंवर के पिताजी ने एक गेहूं कुज्जा खुदवाई थी, सुबह में बीजक लगवाओ तो कि जब बीरन की ससुराल को गल गई, वो जब बादशाह की ससुराल को गल गई.
1: अच्छा,
0: गली में से बटी उन्हें लगी प्यास, तो राजन ने हुक्म ढीलो चलो बीरन पिया पानी. बीरन गा पानी पीवे के लाने, सुबह ने बीजक बाँचो.
1: अच्छा,
0: बीजक बाँचो वामे सुबह में गली अलग अलग. बीरन हो बदमाश, बीरन बदमाश हो.
1: अच्छा,
0: तो बीरन ने कहा करो किस्सा के पानी पी के बावरी में और वह बीजक को भरा जाओ.
1: ले उसका
0: अगर हमारे अगर जब बीजक को जो राजा पानी पीवे आ रहा तो जब बाँचे ले संग छूट गो. इसे कह हमारे ससुराल चलेंगे
1: चलेंगे
0: तीनों जने.
1: तीनों जने
0: जा तो बीरन बदमाशी के रहवा. सुबह सब राजा पानी पीवे गए, तो राजा ने पानी पियो जो तमाम बावरी में है. सुबह में बीजक में गिलाव लगो, तो राजन ने अपने खोबन की उली सुली के भाई
1: धोदाओ
0: धोदाओ और फिर उगे बाँचो बाँचो भाई. सुबह ने उन्हें प्रधान पूरा लिखो कि जा राजन के कुंवर को रास्ता गई और जब बीरन के कुंवर को रास्ता गई. दोनों जने तो बोले कहले तुम वे बीरन, बोले कहिए राजन के राजा, बोले तू बहुत बदमाश है, बोले कहले पुरखन को बीजक के ने मिटा दिया है, हट कर ले कि हम अपनी ससुराल जाते हैं अपनी ससुराल. तो बोले कहले उनकी शर्तें लग गई.
1: अच्छा,
0: बोले कहले जो पहले आज विदा करा के वो जिस बाउरी पे ठहरे क्या जन किसी को बीत जाए. अपनी ससुराल चले गए और भी अपनी ससुराल कर ले वो जी सताई आपका नाव. बोले कर ले जी राजन के संगे चले.
1: सही है,
0: अरे हमारे वर के संगे का चले, हम सेठ आदमी और राजन के संगे जी वो हेल्पर चलते हैं. कर ले राजन की कुमार और सताई आपका दो जने जा रहे हो बीरन अपनी ससुराल चले गए. अब सब राजन के कुंवर जा रहे थे बन कजली में पहुंची, तो अब राजन के कुंवर को लगी प्यास.
1: अच्छा,
0: बोले कर ले सुताया का, बोले कर ले ये राजन के राजा कर ले हमें प्यास बहुत जोर से लग रही और हमारे सागर सही से प्राण निकले जा रहा है, इसे पानी को देखो. बोले कर राजन के राजा बारह कोस में ना है पानी ना माए पानी, अपन वन में हेंगे. बोले कर ले अरे क्या क्या बोल रहा है ना गा के. बोले कर ले हो महाराज सुबह एक का खैबर पर चढ़ी सुबह देखते भी लंबे जिस ऊंची जांगा हो सब देखा ऊंची जांगा हो भी चढ़ी तो ये उत्तर दिशा में बगली मर रहा है. तो नाव ने सोची कि बिन पानी की बगली रहती नहीं है, पानी इधर होगा
1: बिल्कुल.
0: तो बोले कर ले राजन के राजा पानी तो हमें कहीं दिखाना नहीं है, उत्तर दिशा में बगली मर्रा रही और बिन पानी की बगली नहीं देती है, पानी जल्दी हो गया. बोली कहना चल तो ले जा सुबह लोटा घड़ी ले अपनी और चल जा. अरे खुली जाए सुबह जन्म दे पाई खुली से जीत गए कि आना. फिर बाहर आराम से आराम से बिन नगद चली गए. काकस्ता हाथो के जोनवर लड़की राजन को ब्याई थी वो नदिया में स्नान कर रही।
1: अच्छा
0: वो नदिया में स्नान कर रही। सुता यक्का ने कहा करो कि झटपट पानी पी के मचो सचो भर के पहुंच गए। बोले कल सुता यक्का बोले कल ये राजन के राजा बोले कल उस तालाब में पानी ये सो ठीक है तुम लिया बोले कल हाथ जाकी ना पूछो पानी पी लो तुम बोले आप तो पानी जब पिए जब जब बात पूछ ले बात है क्या क्यों पानी जो मचो लिया ऐसा जल्दी होते कौन के मचो सचो भर के आ बोले कल महाराज कल तालाब है वो बड़ी अजीब का लड़की सफर रही एक तो उसके साथ हमारा मूर्छा छा के गिर पड़ी तुम तो सब मचो सचो भर लिया वो हम खुद की आसन मर जा रहे। अरे बोले कल बगरा में सुबह पानी बगरा के तालाब पे पहुंच गए। तालाब पे पहुंच गए तो तालाब पे पहुंच के बाद वो कल सुधायक का बोले कल ये राजन के राजा बोले कल इसको लड़की को पूछने तो जरूरी जब मुंह बोले कैसे
1: सही है
0: जब पीछो करें अपन ताए को और मुंह करें तालाता है बोले कल कहो उन्हें कही

0: नाव कक्का ने कही के
1: नहीं राजन ने कही जावा
2: राजन ने कही जावा
1: राजन ने कही जावा उनने फिर कही उनने अब्बा बोले जल में ठाड़ी जो
0: अच्छा
1: अब्बा बोले
0: लड़की जो नहा रही
1: जो नहा रही बा बोल रही है

0: सचाया का बोले कल्ले राजन के राजा सुनो हमारी बात अभी से बोल दो ना।
1: सही है
0: अभी से बोल दो ना बोलो कब का बना दे वाला
1: बताओ
0: हैं।
1: सही कही
0: बोले कल्ले नहीं अबे तो हम इससे और बोलेंगे।
1: हाँ
0: अब राजा बोल रहे हो
1: हाँ
0: भूले मोसा।

0: जितने गली बता दो सब काऊ के द्वारे लगे
1: आप पहुँच जाए।
0: अब कहिए हाथ उठाते अगर बता दीजिए, अब जल के भीतर हुई, अब इनको समझ में नहीं आ रही जल के जाए, इनको बदल शरीर है कैसे, मुँह करें माए को और पीठ चले इंताए को कई के अब जाइए से बताया। सुनने के बाद माँ से बोली

0: क्या बात मिल जाओ।
1: अच्छा
0: बाने मिल ना बताई न बाने बदन काड़ो जल नीर में रही बा।
1: अच्छा
0: अपने पर्दा भीतर रही मैं साबुन ने किसी गली से पूछ ही ली गली पूछ के उनने घूरो बड़ा गाँव के लाने तैयार। अब बाने सोची कि ये मुसाफर अगर पहुंचो जा तो गड़बड़ हो जाए बाने जल्दी पल्दी सफरो और सफर फूर के और बाप ने जेल चली जो ने ये हती से जाते भवन द्वारे छोटे लड़का को देखो तो ससरा भवन द्वारे उनने अब पहुंची घरे सो भी घरवाओ को बना।

0: भाभी ने ऊंचे कलेरा नंदी नीचे करो बातन जिन बतराओ
1: ऐसे
0: और तुम्हारी आ गए चाला
1: अब लुबग्गा आ गए तुम
0: लुबग्गा तो उनने फिर भाभी से कही अरे भाभी आज नाश्ता तुम न बनाओ आज हम बनाए
1: ऐसा
0: भाभी से कही सुबह सुनने घरेला उतार के अपने नाश्ता बना दी की लाने तैयारी करी अब इन दोनों ने कही चला
1: अच्छा
0: बोले कल देखो अपन को कगुआ गेल कुमार बनाए थी
1: बिल्कुल
0: अब भोजन नहीं करने अब भोजन नहीं करने इसकी यहाँ वाला
1: सही
0: है जी
1: सही कह रहे
0: अब खुला खुला थे अब नहीं खुलो हाँ मैं तो सलाह हो रही दो जन की सलाह हो रही नाव की और राजन की सुबह सवा थी सोने गुंजन की भोजन बने भोजन बना के और आज्ञा दे दी भोजन की लाने तो दोनों जने भोजन को गए भोजन को गए साफ सोने चाहे एक लो चाहे खाई हो चाहे दो खाई हो और वहां से बने थना ना जवाब ठोको
1: अच्छा
0: ठोकनी ठोकने ना तो भेज कैसे खोले वहां
1: सही है।

0: टाटी सरकार के मोए कच्ची अब अभी खुल गओ के जई है हां
1: सही कह रहे
0: जब जब बात
1: आ दई के उते
0: जई है जब बाबा ने बात खोली सो बोल समझ गए सो उनने मां टाटी माटी सरकार के ओ बस सुता जा काने पे झटपट जो कछु राजन चली तो बाप बांधी
1: हां
0: ओ बाप नी बांधी ओ बस टाटी माटी जो कर कमे लगा के कर काए काए राजन बोले कल अभी तक क्यों आया बोले कल महाराज मैंने अपनी टाटी धोई वो आपकी धोई तो फिर मैं आया
1: जैसे टाइम लगता
0: जैसे टाइम बोले कल सुन ले कल सिपता ना उन पाए वो अपन घूरो कस के तैयार हो इस पापन को मिलवाया इसको मिलवाया सुबह सुबह तैयार हो गए जहाँ से करा वो उन्हें भज्जा घूरो कसो सब रात में घूरो कस रहा सुबह ऊपर को पले चावल पीटते कस रहा
1: अच्छा
0: वो पले चा पीटते के तन दिन तो मुंगे आगे बड़ी आगे
1: हाँ हाँ ये मैं भी दे रहे
0: ये भी दे रहे चला क्योंकि कसे
1: हाँ
0: ये सभी लोग आओ जाओ तो बस जो राजन को हाँ साफ कर भी हो गए तो राजा का कल के क्या है जो ऊपर का पले चा नीचे कस दिया गया अच्छा कस तो उन्हें भज्जा छोड़ चार के दोनों राम के पास है जंगल झाड़ी वाले निकल उठे निकल के भाभी पूरा पड़ोस की जनी ने दोहा रेशम डोरा पाट को रे जले दियो रे चटे का

की देखो रिश्तेदारी है वो जब तुम दिन चटकाओ और टूटने से जब जुड़े नहीं वो जुड़े सुर में गांठ पर जाए गांठ पर ये जाओ।

0: नहीं गए
1: उके च रोगा जो न बपरोस की न
0: बपरोस की न कई जवाब
1: हां सो परोसन ने सोची कि अगर हम भोजन कराऊ तो केर बेर को संग है
2: सही है
1: बेर भर के जा हां
2: सो
1: उनने हदीसो जैसे कछु पुटिया पर मूत की
2: हां
1: कोई रानास में ले गए
0: हां फिर कमाई खोन पुटे पाड़ जा ले गए
1: मैं कहूं वही जा फोन की रानास थी
2: हां
1: फिर पहुंच गए हां भाई सतखंडा पे पहुंच गए तो अमन ने सोची रानी ने कि अगर भोजन में है तो ये भूखी अब रात को है समझ गया ना हो तो हम भोजन नहीं ले जाए तो भोजन में लगा थाली को भी पहुंची तो लगा फारी जो छाजी पे चढ़ी भी तो बिस्किया पे नहीं थी भी तो वो बजो बिस्किया बजो तो उनने बिस्किया की आवाज की सुनकर मोर भूल गई बन परवासन दोहा गया नहीं संत

अरे आज नहीं तो अरे भोर जी, अरे अगर नहीं खाओ नहीं तो भोर खा लो, इसे तुम बोलना उनसे, नहीं कर बाने फिर दो जाकर कहो।

कामनी। अरे खोलो का, अरे किवार जी उन खोलो कंठ के बाद लेके उनने नाव से कही के किवार नहीं खुली। अब जो जो है सुनो साधु ने, साधु ने सुनो दोहा। साधु के राम से

0: शंख बजे से साधु जग बम घले राजपूत, अगर इतने में के बम घर रहो और नहीं जग रहो तो कुछ कब कुछ
1: सही है का हो
0: का हो
1: कत्ते दुनिया भगत जावे रु विश्वना का जाए।
0: अब जब इतनी बातें हो गई तो पड़ोस में पतो होगा
1: हाँ
0: कि रानी राजा के पास में भी गई। अब फिर की दो हाँ कह रही है

0: लड़की लड़का से लड़की भाली रे सो मेरे पे ब्याह जी। अरे ऐसी सासों का काम की है तेरी कूखन बांझई हो जाती, और ऐसे सब कुछ जाए तो लड़की होती तो परोस मेरी पे ब्याह शादी कर देती।
1: तो वो रहती
0: ये तो कड़ी गया है ना सुबह पटक थार जब थार पटक के में भागी आई सुबह अपने मेरे भी अब रात को समझ जा कहाँ जा रहा है जो सवेरा हो सोने घोरो मस्को चली गई। सो ससुर साहब ने कही करी दीमान जी ऐसे नहीं चलो, हम आपकी स्वागत कर रहे और सब बात को बाहुराओ और भोजन करो, भोजन करके हम आपकी पूजा कर रहे हैं। ठीक है सुबह भी रहती है गए खाना खाओ, खाना खा के और पीने सुनने सजाई तो उन्हें विदा उनकी कई वो में खाना पीना सब और महीना भर के जाने रखा था। खाती जे घर चले गई बस आओ आप भी रहती सो अब पीने हकावे बारे हकी तो जैसे गाँव के बारे करी तो उनमें मार जताई फिर भी भक्त छोड़ दी। अब खुद उनने हकाई अब सताई अब काल कबाज जी ने हकाई सुबह हका के हो गए सब कहीं ऐसी और चली होंगी तो शाम हो गई से एक बमूरा को पुल हो रहे से उतरे बस गए शाम हो गई से बस गए। बस के में अब वो लेकर ले सुनो सुधा का वो लेकर ले का कल ही पापन को ही छोड़िया नहीं यही रुकता है। बस सुन रही थी बस सुन रही थी सुबह ने कही के ठीक है सुबह सताई अक्का से कही के सताई अक्का ऑर्डर दौरान आने के पति लगाओ तो सताई अक्का गए से तीन पात में लगा एक अपन को एक राजन को एक रानी को ये तीन पात में कहा खुल जाओ बोले कल एक आपको एक हमको एक रानी को। अरे बोले कल रानी की फार के फिर जमाए रानी की फार के मार फिर गई। पातस लग के आई तो खाना खाओ खाना खा के पड़ी पड़ी सोई। अब रानी ने सोची कि ये भगत तो हमें छोड़ के हैं इसे का करें जब ये सुबह घोड़े की पछाई की ये रहती ये बजट बात बडूर बनी थी तो बस छोड़ के बाने पीने से मार ले बडूर ये भगे तो जब हिल टूटे समय यहाँ का अगर हम सो गए आँख खुल जाए तो हम इसे कचू किया ले सुबह सुनने थी तो घोरो भंसाई रात भाई को बढ़ाओ सुबह तनो वो तनी बार दूर कहीं दूर सो नेक चावा पट्ठो को घोरी में सुबह दूर पड़ी सुनने कही थे रानी मैं

एनर्जी थी, हर में बुझा गई हमें। हम न जई गांव के रहे न भई गांव के रहे, अब इस नलवारे के चले गए, अपने भवन को चले गए। और रानी ने अति सुबह पी नस्कू घर वाले और बाने हकाओ हकाओ को रानी को गाड़ी हकाऊ थी हकाऊ थे रानी तो हका सो वैद्य से कचुवती सो राजा गिलंद की बाग में ये जा रही सो अन्य भज्जा घर वाले नाय के चूपी माए की बोलैया चूपी रानी वो तो मालिन है जिस मालिन गोली गोली कर ले गई कौन कहा की पापन आ गई कहती है तुमने एक मोर रानी ने वो मालिन को बहू में भीतर बीरा दे जाए अभी तो राजन की बेटी थी तो कछु मोरन को कछु टूटो तो यही है तो अपने इंतजाम में अपनी कुठज्जा में उन्हें दुकान रहे कहाँ रहे सो ऐसे ही कछु बिलाद दिना हो गए दुकान दुकान सो एक दिन अब उनकी बेटी हती राजन की यानी जमदीप नाव तो का नाव तो बेटी जमती नाव तो बेटी को सो बिन्न बे फूलन की तुला तो लगती हुआ सुबह मालन रोजी ना डाली लगा दे और फूलन को ले जावे सो राजन महती सोची के मालन तो इतने आओ तो हम आज बगीचा घूमे आए सो बगीचा घूमन गए भी सोते बार राजन की लड़की रह गए सो राजन ने सोची कि जितो काछी माछी की तो जाहे नहीं है, है तो कहो राजा की लड़की सुबह जैसे कैसे अपने घरे पहुंची घरे पहुंचे सो घरे पहुंच पाँच के उनने कही अब्बा से कही मालिन से उनने कि माता जी रोज तो डाली तुम लगाओ आज डाली हमें लगाओ तो उनने डाली उन्हें लगाई अब बादशाह ने हती सो राजन की पिया नहीं होती बाबे नहीं होता कहूं कहूं अबे नहीं होता पिया रखो सो राजन ने सोची अब उनकी रानी हती बादशाह स्वप्ने उन्हें थारी लगाई दो उन्हें परसों बिजना की हवा कर रही बिजना की हवा कर रही रानी उनकी बादशाह की सो बनने सोची अगर बन के हमारे खुलवाली आई थी बन में ना छोड़ी आई थी भाई ना करती हवा सो ने हर सांस ली सो बीजन ने सोची कि कोई बात में खरखसा है राजन की बात में कोई खरखसा है सो नाव से पूछी जावा बोले क्यों खवास का बोले कल कहिए राजा कल कारण का है ई को राजा हर सांस ले रहे भोजन नहीं कर रहे कल ये रानी को वन में छोड़िया और भाग गया तो उनने अति से घोरो उनने सजो और वीरन ने सजो और पहुंचे बोले कल चलो बताओ कि ते कौन छाड़ में छोड़ी फिर जो रुख तरह छोड़े थे वही रुख तरह जीत गए दोनों जन नाव नहीं गए दो ही गए सो बोले कर ले अब उनने हती सुबह गाड़ी पर पीनस की जो रास्ता थी बंद है सो मालिन के पास भी पहुंच गए राजा गिलंद के बाग में और गए पहुंच गए सो उनने कही के ठीक है सो उतर जाके इनने का किस्सा करो कि डेरा दो जन ने गए सो उनने भैया मालिन ने उन्हें घर आया बोले कल क्यों रे कहा कि हो परदेसी कैसी फिर रहे तुम जगह बात और हमारे राजा सुन सुन तो तुम्हें जान से मारा ले हाँ सुबह आराम से मालिन को साजा तो मालिन से पूछी सारी बात तो मालिन ने उन्हें सारी बात बता दी कि रानी जो है और रंग महल में पहुंच गई राजा गिलंद की ठीक है अब अरो कमाओ ने वास्ता तो बदमाश होते ही है जो रूप काट को वो रूप काट उन्हें ऊपर दिले साड़ी करी सो मालिन है किसी उन्हें बहुत राजन ने बोली कल ले दो घोरे वाले आए और भेजा के और बहुत परेशान कर रहे उनमें सब नाश कर दो बगीचा को सो उनमें छिड़ जा ये तुमको राजा बुला रहे बोली कल ले हाउस आओ जब तभी ऊंची हती
बिल्कुल की और जहाँ से वे सज बज के फिर गए वे अपने अपने घोड़ी लेके बोले उनकी गैल में सलाह हो गई। बोले कल तुमसे बात करे से तुम मुँह काट लीजिए और हमसे बात करे तो हम मुँह काट लेंगे। बोले ठीक है सुबह गए सो राजन की बगल में एक ही बोले बैठो ही बोले बैठो। अब उन हाथों एक बीजक राजा गिलन ले कि अगर जो बीजक जी नो पहुंच गए हम लड़की की शादी उसी के साथ करेंगे। तो अब उन्हें किसो जब सलाह हो गई बस सका ऐसे काम लगाओ। अब वो रानी ने डेरा जाओ डेरा जाओ कि देखो भाई राजा गिलानी ने जो बात हो बोली कि तो हमारी रानी बन जाओ। बोली कर ले नहीं ये राजा गिलानी को बाग कटे चल जी और जी मकान गिले चल जी। सुबह ने कि तो ठीक है सुबह जो बंदे जो काम लगो सुबह अपने मजूरी खोने की जाओ जावे। सुबह रानी जो बबी की अति से छाजी तो दातन कर रही थी तो बीजक लाई थी बबी जब बबई लोटा के कर रखती दाता वो लोटा में लिखो है तो सुबह बीजक को गई जो बादशाह ने बात बीजन बात ले बादशाह ने बीजन ने बात बोली कर ले ठीक है बोली कर ले कहीं तुम तसला पटकत पटकत ऊंचे सार पांच की पड़ रही और तुमने पहचान नहीं करी कछुआ तुम ना तुम सानो और हम जो डारा सुबह गए डारा सो आराम से गए डाल भी के लाने तन को तसला में से गिलाव पहुंच गए वही में दवा बेटी में दवा में जो राजा गिलंट की लड़की सो उन्हें अति सो अब तो खिलाड़ी है तो उन्हें बोई लोटा दाओ बोई लोटा उनमें दाओ सुबह ने अच्छा ले लाओ निगंध की बल्ला के बल्ले लोटा बाद में पहुंच सुबह सुनने फिर भेजो छड़ गया पकड़ लिया सुबह जब भी गए पकड़ा सुबह देख दाग के कर ले ये कौन मजबूर हैं ये तो कोई राजा है सर क्यों इनसे भूलत कैसे हैं

0: बोली कर ले कबीर साहब कहाँ के रहने वाले हो कैसे हो, बोली कर ले के दीखी। फिर वह लड़की की शादी करी उन्होंने उनकी रानी ने हती बात से हो गई।
1: देखो दोस्तों जातो पर सब जन ने किस्सा सुनी है यानी कि कहानी खुद सुनी है और एक किस्सा को आनंद लाओ। अब एक के संगे संगे अपने दोस्त माता दिन को हो रहा आज के कार्यक्रम से जावे को समय तो अपने दोस्त को दो ये कार्यक्रम से जावे की अनुमति अपनी तपनी फिर हुई मुलाकात कार्यक्रम में एक बेरा पे जब तक के लाने नमस्कार।

आकेरे अपन खाजी बताएं अपने जीवन की सभी बातें और सभी अनुभव। तो सुनो जी काकेरे।

0: श्रोताओं को भैया अपने काशीराम की नमस्कार पहुंच जावे। और भैया आज हम आप सब जन के लाने एक बहुत ही नौ सौ कार्यक्रम लेके आए हैं, जिको भैया आप सुनो और सभी पंच सुने। और भैया ये कार्यक्रम को नाम है सुनो जी का कह रहे। तो आज अपन बुजुर्ग दादा भैया की बातें करें और सुने। और यही क्रम में राम गोपाल दादा है, अपन इनसे बात करें और जी अपन को कुछ बताएं। लेकिन ई के पहले अपन सुनत हैं एक बहुत ही नौने से गीत को, जी को भैया गाँव है रजनीश दुबे ने। और देखो ऐसे शब्द कहे इनने इसमें के आप इन शब्दन से गीत में इनने समझाओ है का कही। दरस राम के पाके और हो वे धन्य भाग जहाँ के, अगर दर्शन अपन भगवान राम के पाले हैं तो अपने धन्य भाग हैं। और भैया तो ये गीत को सुनो, आप सुनो सभी पंच भैया।
1: दरस राम के पाके

0: तो भैया अबे सुनो, अपन सब जन ने जो गीत और रजनीश दुबे जी ने कितने अच्छे नौनी तरीके से अपन गाओ के सुन बताओ है, और अपन सब जन ने सुनो है। अब अपन बात करत है राम गोपाल कुशवाहा जी से।
1: दादा राम राम।
2: राम राम।
1: अपना दादा नाव का है
2: राम गोपाल।
1: तो दादा अपनी उम्र कितनी है आप?
2: हमारी उम्र 70 है।
1: अपन कागे रे विवाह दादा?
2: केना के पूरा पटो ग्राम केना लाठी गमगा कैसी नेवाड़ी मध्य प्रदेश।
1: तो अबे आप दादा का करे तरह
2: ये हल्को हल्को काम कर रहे अपने ढो बच्चे देखे ना बस।
1: और
2: खराब वर्क का हम खराब बस किए काम वाम हम रहे तुमने कर।
1: आप अपने परिवार वाहन से का के वो चाहते हो?
2: परिवार वाहन से का के वे चाहते जब तो जैसी समस्या है तो अपने भगत रहे।
1: आप जो बता दादा कि बुढ़ापे में अपन का कौन कौन सी दिखते हैं उन लगत और का परेशानी दिखते हैं आती है अपन का
2: बुढ़ापे में? तो देखो ना खाना मुराद एक बार देखो घाम लगा काम दौड़ नहीं पाओ लिंग नहीं पाओ घूरी फिरा हर एक बात की मतलब नेक में मुश्किल दिखा दो अगली बार।
1: और वैसे वो समस्या है अपनी?
2: अब वो समस्या जो बाल बच्चे खा रहा है तो दी हमें ले आया हम खा रहे हैं
1: अपने मोड़ी मोड़ा अपने पास बैठ भी आओ
2: आओ बैठ भी आओ जी नहीं आओ पूछ रहे थे।
1: अच्छा
2: अस्पताल जाने हैं।
1: और अपने सेवा खुशामद के बारे में आप क्या कह सकते हैं?
2: सेवा खुशामद सब करा थे जनाब जी बैठे अब बैठे भी हैं मतलब जो लोग ठीक नहीं है चला फिर निकल लगे
1: दिक्कतें हैं उनको अपन कैसे झेल सका

0: का कर सकत
1: रात में झील सकत मतलब बैठबो है सीधी बात है पैसा जो खाए तो कही है अरे कछु नन्या कछु न तो 10 रुपए पर जल उसको तो खर्च है ये आदमी को मान के चलो कछु न कछु वो 10 तो उठा के चल जाती है।
0: दिन भर आपको कैसे कटत
1: दो बच्ची उनता दिमाग लड़ा ले सुझारे सुझारे अपने छाने में चल बस।
0: अच्छा और अबे तो आपका दिक्कत दिखावे की तो दिक्कत कछु है नहीं है ऐसी जैसे का आप बुढ़ापे की
1: बुढ़ापे मतलब
0: दिक्कतें आदमी का
1: दिक्कत तो देखे के नहीं होती नहीं है तुम है जो कागज है जो जो जो नहीं बांस पा रहे हम मतलब और उसी है दिखा कागज नहीं बांस पाऊ मेरे दिखा सब
0: और अच्छा ऐसी कौन अपनी परेशानी है जो आप ना कह सकत हो खावे पीवे की आपकी का
1: खावे पीवे की कोई तकलीफ नहीं आ रही जो भाई में है तो खा
0: अच्छा अपने माता पिता की सेवा में और बेटी में का अंतर है
1: पहले इज्जत रहती समय अनुसार इज्जत रहती इज्जत नहीं आया और पापा जाना फेरी अरे पापा ही जाना फेरी के मतलब अपनी अपनी हो चाह रहा हूँ आदमी हमारे वाले बच्चों जो चीज मिल जाए हमारे मिल जाए दूसरे की जेठानी न मिले दिवानी न मिले ऐसी समस्या है मतलब अभी के समय में
0: तो अपन का के वो चाहते हैं कि कैसे हो चाहिए अबे के सब का
1: जब जो हो चाहिए शांति हो चाहिए प्रेम हो चाहिए सब में बड़ा प्रेम प्रेम है तो उसे कबू आपत्ति नहीं आए प्रेम है तो सब मतलब आपत्ति नहीं आए उसे शांति है शांति से मतलब हरी सुविधाएं कबू आपत्ति नहीं आए।
0: अच्छा जो आपने प्रेम की बात कही तो ये प्रेम में और काका छिपो अगर प्रेम ले तो काका अच्छो हो सका
1: प्रेम जो अपने मतलब ईमानदारी काम प्रेम में उबर का जो काम नहीं करा प्रेम मतलब जीव अजीव काम प्रेम
0: लड़ाई झगड़ा ना उजे पैसा टका खर्च ना उजे
1: हाँ घरे पैसा रे मतलब जो मतलब लड़ाई झगड़ा को काम नहीं करना
0: तो अपनो काके वो है रेडियो में जो भी आपका सुने आदमी कैसे अपने बाप मताई की सेवा करें चाचा जी और कैसे रहे चाचा जी आप का करना चाहो सब जनन से आपको काके वो है
1: बात तो बात खूब बड़ी है मतलब ऐसे बाप मताई की सेवा करें
0: तो वही बात तो, बड़ी बात तो, मतलब शुरू से आप बताओ
1: यात्रा ना कछु
0: हाँ यही बात आप यही बात पूछना चाहो शुरू से बता दो आप आप काके वो चाहते
1: जो अपने बाप मताई को माने उसे भगवान को माने सब इज्जत ले प्रेम ले लक्ष्मी जी ले सब मतलब नहीं के ऊपर है बाप मताई को छोड़ाओ तो तुम्हारे बाल बच्चे छोड़ा मतलब आगे चली जाइए तो मतलब
0: अबे आप तीर्थ यात्रा की बात कर रहे थे
1: तीर्थ यात्रा मतलब जैसे पैसा है देने बाल बच्चे चले जाए तीर्थ यात्रा हुआ अब पैसे नहीं तो जाकर आगे है जो मतलब है जब कहो के चले जाओ ये पैसे आगे चले जाए अब जैसे पैसे ही नहीं जाते कहाँ जाए तो क्या करे रोटी नहीं खा पा रहा है आँख से कमजोरी हो गई पैसा खर्च को मिल नहीं रहा है टेंशन बन जाए तो अच्छी बात है
0: और का के वो चाहू था
1: जी उठ के आराम चाहू बस मिल जावे टेंशन बन जावे तो पैसा खर्च को जाओ गए लड़का वाले अपने वाले बच्चे को समान खाने दीवे तीन चार सौ को महीना मिल गए तो अपने उम्र खाद चलाते
0: ठीक है दादा जब आपने अच्छी जानकारी दी तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो देखो भैया अबे अपन खान ने बुढ़ापे की सारी बातें बताई हैं कि ई बुढ़ापे में कौन कौन सी दिक्कतें हैं का परेशानी है और अपनो जीवन ई उतरती अवस्था में कैसे कट रहो है और एक बात और इनने अच्छे तरीके से बताई है कि अगर पैसा होते तो हम घूम लेते कोनो आमदनी हो जाए या को हमें पैसा दे रखे चारो धाम कर है। और भैया ये तो बातें अपनी अबे हतीसो सब जन ने सुनी ही है लेकिन आप लोग जा भी कह रहे उन्हों को भैया बिल्कुल बात नहीं मैं बताएं तो अपन और सुनत है एक गीत खो और ये गाँव है भैया वंदना अहरवाल ने और इनने देखो इस शब्द में काका गौवा के गोबर मंगाओ यानी गऊ के गोबर मंगा के जी अपने और चौक पुरा रही है और शुभ संदेश की बातें कर रही है और संदेश दे रही है। तो भैया अपन सुनो सवई पंच भैया सुनो

भैया अपन और सुनत है एक गीत को, जी को गा रहे हैं उमा शंकर नामदेव, और जिनके बोल हैं सब देवन में सबसे पहले प्रथम पूज मनाएं। तो भैया आप सुनो और सभी पंच भैया सो सुने।

तवैया अबे सुन रहे थे जो कार्यक्रम सुनो जी का केर है। ये कार्यक्रम में आप सब जने जानते ही हैं कि हर रविवार को बूढ़े पुराने दादन की बातन को सुनत हैं, जिनने अपनी बातें बताई हैं कितने अच्छे तरीके से अपनी बातें बताई हैं, और ऐसा ही हम हर रविवार को लेके आओ थे ये कार्यक्रम को सुनो जी का केर है। अगर आप और अपने दादा पिताजी की अच्छी देखभाल करत हो तो हमें जरूर बतावें, और अगर दादा अपने सुख दुख की बातें करें चाहू थे तो हमें सो बतावें भैया हमारे पते और फोन नंबर पे। और

देखो बतावे के लाने लिख लो भैया हमारा पतो और फोन नंबर। तो भैया हमारा पतो है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तगेला के पास ओरछा। अब ई बातन के संगे संगे अपने दोस्त काशीराम को होत है समय कार्यक्रम से। तो भैया देव आज्ञा और यही कार्यक्रम में फिर से अपनी मुलाकात हो जाए, तब तक के लाने आज्ञा दो अपने भैया काशीराम को। तो नमस्कार।

काकेरे अपन खाजी बताएं अपने जीवन की सभी बातें और सभी अनुभव, तो सुनो जी काकेरे।

0: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप आ गए इस वक्त अपने दोस्त माता दीन के संग में। और साथियों हम लेके आ गए आपके लाने जो प्यार हो तो कार्यक्रम मेरी बुंदेली मेरी गीत। तो आइए दोस्तों सुनते हैं प्यारी प्यारी सी फरमाइशों को।
1: हेलो
2: सर, नमस्ते।
1: नमस्कार नमस्कार भैया, को बोल रहे
2: हैं? सर
1: हाँ, दीनदयाल भैया कैसे हैं? बिल्कुल दीनदयाल भैया, आपको मेरी बुंदेली मेरे गीत में बहुत बहुत स्वागत है। बताओ कौन सा गीत सुने हो? ऊंचे पहाड़ पे बैठी मैया रतनगढ़ वाली।
2: जी सर।
1: चलो भैया दीनदयाल भैया, हम आपको जरूर सुनवाए हैं जो गीत। और कहा हो रहा अपनो?
2: बस बढ़िया है सर, पानी वानी लगा रहे खेत में।
1: चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है आप ऐसे फोन लगा उतरा बुक करें।
2: ठीक है सर।
1: नमस्कार भैया।
2: नमस्कार नमस्कार।

0: नमस्कार महेश भाई, कैसे हैं?
1: बढ़िया है सर, बढ़िया है भैया। सब आप लोगों के पास, ऊपर वाले के पास है, और सब बहुने वाने हो गई, पानी आने लग रहा हो।
0: चलो बहुत अच्छी बात है। तो मेरी बुंदेली मेरे गीत में कौन सा गीत सुने हो?
1: आज हम गीत सुने प्रियंका किशोरी और छोटे राजा।
0: प्रियंका बुलबुल जी की आवाज में?
1: हाँ।
0: चलो ठीक है। अच्छा, गीत के बोल बता पाए आप?
1: एक गीत कोई गाओ सुना दीजिए थोड़ा।
0: अच्छा, चलो
1: बोल तो। हाँ, बोल याद नहीं आ रहा है।
0: चलो ठीक है, हम उनकी आवाज में आपको गीत जरूर सुनवाए।
1: ठीक है भैया, जय राम जी की।
0: जय श्री राम, जय श्री राम।

सर्पों का श्रृंगार हुआ भगवान शिव का, तो वहां देखो एक बार।

नादिया भागा, भगवान शिव का सब परिवार बिखर गया तो एंड में क्या होता है? बिखर गया परिवार।

अनशन बन गया। कहना है कि मांग लाल है बिंदिया फाल है कंगना कलाई में और चंद छबी मुख चंद्र विराज गोरा।

0: ले शंकर से सगाई में मस्त रहे चलम।
1: बिल्कुल भैया बिल्कुल, मेरी बुंदेली मेरे गीत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताओ कौन सा गीत सुने हो?
2: हमें सर वो सुनवा दीजिए, कचरिया जी को भाव ब्याह। हम अपने गांव जुगियाई से बोल रहे हैं, सतीश साहू।
1: जुगियाई से सतीश साहू जी?
2: जी हाँ सर।
1: बिल्कुल सतीश भैया, आपको जरूर सुनवा है जो गीत है।
2: हाँ सर, और सब बढ़िया है सर?
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बढ़िया है?
2: हाँ सर, सब राम राजा की कृपा है, आप लोगों की सब बढ़िया है।
1: चलो बहुत अच्छी बात है, आप ऐसे रेडियो बुंदेलखंड सुना तो हम आपकी फरमाइश जरूर सुनवाए।
2: ओके सर,
1: नमस्कार भैया जी।
2: नमस्ते।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप सुन रहे थे आज की सभा के प्यारे प्यारे से कार्यक्रम। तो दोस्तों आप सब जन खोजे आज के कार्यक्रम कैसे लगे। अब दोस्तों आज की सभा इतनी संपन्न होते है, तो चलत चलत आप उन्हें लिख लो हमारे फोन नंबर को और पते को, जिसे आप उन्हें फोन नंबर पे और पते पे हमें कार्यक्रम के राय सुझाव भेज सकें। दोस्तों हमारा फोन नंबर है 92 19 20 77 49। सो ई नंबर पे आप फोन लगा के और हमें बता सकत के हमें कार्यक्रम कैसे लग रहे। अब दोस्तों लिख लो हमारे पते को, हमारा पतो है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तेगेला के पास ओरछा। सो आप और ई पते पे चिट्ठी पत्री लिख के भी भेज सकत के हमें कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं। अब आज की सभा को इतनी समापन होवे को समय हो गयो है। नमस्कार।
1: ये आवाज है बुंदेलखंड की।